0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: Nerdy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Nerdy, burga.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
1: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
1: भैया किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
1: भैया नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला?
1: पागल
2: पागल
1: कौन बोल रहा
2: है? पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा है, इको।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, जय साल भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
1: भैया नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
1: हेलो
2: हेलो
1: भैया, क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
1: पागल
2: कहीं का?
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
1: रवि
3: है। रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
1: कुकड़ू को
3: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
1: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stay
1: on CC pe 25 September ko. It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 September ki sham taiyar rahiye mujhe milne ke liye, jahan par main karungi aapse baatein aur janungi kya soch rahe ho aap apne man mein. See you at the show.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC.

0: वेल ना आए हो, कब आओगे मैं जाने कब। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक। सिंपली आफ्टरनून का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और अभी आपने जो गाना सुना पापॉन की आवाज़ में, जी ये क्यों और ना आओगे ना कब जाओ, पता नहीं यार ये कब जाएंगे और दूसरा कब आएगा। वेल मैं यहाँ ना गर्मी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सितंबर आते ही ना कुछ तो अलग होने वाला है हमारे कतर में, लेकिन नो माय बॉस, ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने ना मेरे ख्याल से बहुत टाइम से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया एक्चुअली।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल जहां सितंबर शुरू हुआ था वी फेल्ट अ लिटिल लाइटर ऑन द वेदर, लेकिन जैसे ही अब पिछले एक हफ्ते का मैं सिलसिला यहां देख रही हूँ कि गर्मी जो है वो कम लेने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे आज की अगर गर्मी की बात करें तो देखा जाए तो 41 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है, 30 डिग्रीज पर मिनिमम है राइट हियर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, कल से भी कहीं ज्यादा, इट्स 83%। जनरली हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम रहती है यार, इतनी भी नहीं रहती है, तो जस्ट बी रेडी कि आज बहुत सारा पसीना आने वाला है और इसी चलते हमको ना बहुत सारा पानी भी पीते रहना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। सो वेल विद दिस शो को आगे बढ़ाते हुए आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और किंग की आवाज में ये अगला गाना,
3: मैं तेरी आंखों में उदासी।
0: एंजॉय दिस राइट हियर ऑन मिर्ची।
3: तुझे खुश।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

Well, that is KK ki awaaz mein ye khoobsurat sa track right here this beautiful morning. A new day, new week, almost mahina jo hai, shuru hote hi aadhe par bhi aa gaya hai. Yes, 2 weeks down to September and bas isi tarah se dekha jaye to bhai hamara jo saal hai na wo zyada khatam hone ke zyada dur nahi hai actually dekha jaye to. So well, yahan par thodi der pehle jahan main weather ki baatein kar rahi thi, I have a little more update regarding the weather. Ki yaar weather mein aisa ho sakta hai ki aapko abhi jo visibility hai wo thodi si reduce ho sakti hai over the coming days. In fact, ye mujhe kal ही महसूस हुआ था रात को while I was driving around. लेकिन इस तरह से है कि chances of mist to fog developing late night and during the early mornings. Yes, जब late night से लेकर ये अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक का सिलसिला होगा शायद ये, तब तक के जो विजिबिलिटी है वो लेस देन 2 किलोमीटर्स तक भी रह सकती है. तो बस मेन बात तो यही है, बस जब आप ड्राइव करोगे तो बिल्कुल ध्यान से ड्राइव करिएगा, ठीक है. अब ये जो गाने का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी स्त्री. माइक से दिल तक आफ्टरनून है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: चुपके से ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

Well, that was Romy और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना Right Here on Mirchi. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. और क्या आप जानते हो कि कतर का विंटर का जो इंतजार है सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, अपेरेंटली 4 मिलियन पैसेंजर्स भी कर रहे हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. कतर एयरवेज इज गेटिंग अप फॉर अ वेरी बिजी विंटर सीजन विद अप्रॉक्सिमेटली 4 मिलियन पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल अक्रॉस इट्स ग्लोबल नेटवर्क जो अभी 170 डेस्टिनेशन से भी ज्यादा है. अच्छा, स्केल समझने की कोशिश करें तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना इज ऑलरेडी सीइंग मोर देन 140,000 passengers, I would say, every single day. So winter में rush definitely और भी real होने वाला है, right? अब traveler के point of view से what's changing for you? हमारे international airport ने 700 से ज़्यादा touch points पर fast pass biometric technology deploy की है, plus additional staff है, mobile kiosk है, extra check-in facilities हैं. Basically peak season में queues और passenger moments को smoother बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है. एंड देयर इज समथिंग मोर आई वुड लाइक टू इंक्लूड हियर. कॉनकॉर्स सी के ऑर्किड में इनफैक्ट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल रिकवरी स्टूडियो एज वेल. ये 25th अक्टूबर तक होने वाला है. मतलब वहां पर एक्चुअली यू कैन रिलैक्स, यू कैन मेडिटेट. इनफैक्ट देयर इज गोना बी 20 मिनट्स का वेलनेस सेशन, लाइट स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब कुछ शाम के वक्त में अगर आप वहां पर से ट्रैवल कर रहे हो तकरीबन 4:30 से 7:30 के तक दरमियान यहाँ पर ये भी चीज़ें चल रही हैं. एंड अनदर इंटरेस्टिंग नंबर आई वुड लाइक टू से दैट जनवरी टू अगस्त दिस ईयर कतर एयरवेज ऑपरेटेड 96,031 पैसेंजर फ्लाइट्स. वाओ, विच इज लाइक 510 फ्लाइट्स ऑन एन एवरेज एवरी डे. क्या बात है. मतलब सोचो अभी पूरी जो दुनिया है कतर के थ्रू ट्रैवल करती है. एंड इनफैक्ट कई बार स्टॉप ओवर लेकर हमारा खूबसूरत कतर भी देखती है. सो ये जो ठंडी का इंतज़ार है ना सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर के पैसेंजर्स भी कर रहे हैं जो वाया कतर ट्रैवल करने वाले हैं. सो विद दिस लिटिल अपडेट हमारे एयरपोर्ट से, हमारे कतर एयरवेज से, राइट ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ वरी दयाल और शालमली कोलगड़े की आवाज़ में. टाइटल सॉन्ग ऑफ शुद्ध देसी रोमांस कमिंग अप योर वे ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ, प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर अस्थाना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ राइट हियर और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ एंड कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक 90s इंडी पॉप का डायरेक्टली कुमार सानू की आवाज में ये गाना एंड मुझे ये गाने से हमेशा ना इंडिया के वो टिपिकल वाले थिएटर्स जो होते हैं मूवी थिएटर्स की बात कर रही हूँ वो याद आते हैं क्या समझ में आ रहा है कौन से गाने की बात कर रही हूँ चलिए सुनते हैं तेरा मेरा प्यार ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

भले खूबसूरत गानों का सिलसिला को बरकरार रखते हुए प्रीतम का म्यूजिक, सोहम की आवाज और मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो का ये गाना राइट ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आप के साथ, इट्स हॉट।

And I can personally say this because I use iPay myself to send my money to India. In fact, there's another feature which I really find useful is the iPay card. For example, आपको पैसे किसी को देने हैं, house help को देने हैं, domestic workers को देने हैं, salary देनी है, तो उसके लिए भी आप iPay का इस्तेमाल कर सकते हैं. And they can use their iPay card for everyday purchases across Qatar and also to send money back to their countries. So बस जिनके पास bank account नहीं भी है ना, जैसे house helps होते हैं हमारे ऐसे, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस आईपी कार्ड और वो भी इसे इसका बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं. सो यस, ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है आईपी वॉलेट में पैसे डालने के लिए. और कार्ड कैन मैनेज एवरी डे मनी एंड पेमेंट्स एंड सो मेनी मोर थिंग्स यार, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. सो फ्रॉम सेंडिंग मनी बैक टू होम, मैनेजिंग एवरी डे पेमेंट्स, दैट्स क्वाइट अ लॉट यू कैन डू विद जस्ट वन ऐप. आईपी सिंपल, कन्वीनियंट एंड जेन्युइनली यूजफुल फॉर एवरी डे लाइफ इन कतर. मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक. राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में।
1: बोल कौन रहा है?
0: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खास तौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
0: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
0: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
0: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
0: एक सेकंड मैम रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ वही
1: बात कर,
0: मैं वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
0: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं बातें सही से कर रहे हैं।
0: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
0: नहीं,
1: बातें कर रहे हैं।
0: नहीं नकली तरीके से क्या,
1: नहीं असली मुझे दिख रही है। असली
0: नहीं
1: कर रहे हैं।
0: नहीं मैं मेरी वाइफ है यार।
1: तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
0: बात नहीं तो तमीज सीख ले। नहीं तमीज
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सुननी है।
0: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
0: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
3: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC अप्लाई।
5: The show was absolutely amazing.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: Mitch.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mitch, murga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग,
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी।
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर

दैट इज एश किंग और सचिन जिगर की आवाज में स्त्री मूवी से ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग. इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक. और मुझे बताइए जनरली आपका जो न्यू वीक की एनर्जी होती है वो कैसी होती है? मतलब आर यू रियली लाइक एनर्जाइज्ड, रिचार्ज्ड और पूरे हफ्ते के लिए एकदम सुपर डुपर रेडी होते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी में से अरे यार अब फिर से हफ्ता शुरू हो गया है? आई वॉन्ट टू नो, देर आर टू एक्सट्रीम्स एक्चुअली. कि एक जो होते हैं वो संडे को बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो अब वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड कि चलो दो दिन की छुट्टी मिली. और एक जो वो होते हैं जो वीकेंड से अब तक के उभर नहीं पाते हैं और फिर नया हफ्ता शुरू करने के लिए इन्हें बहुत आलस आता है. दो लोग के एक्सट्रीम लोग टाइप्स होते हैं. आप बताइए मुझे कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं. 5000 1896 और जो मेरे साथ शेयर करेगा ना कि वो कौन सी कैटेगरी में से, मैं उन्हीं के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ. मीनवाइल गानों का सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए पापोन की आवाज में अगला गाना मैं लेकर आई हूँ. ब्यूटिफुल ट्रैक, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची इट्स हॉट.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न
6: यस
5: टू प्ले
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेजराती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स
6: मिल्क चीज योगर्ट लैवेंडर
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: लता जी और उदित नारायण की आवाज में व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस मॉर्निंग यार. और एक्चुअली मतलब नॉट क्वाइट लिटरली लेकिन ऐसे ही कुछ है ना, मैं आपके सामने हूँ यहाँ पर बातें कर रही हूँ और यही इमेजिन कर रही हूँ कि आप भी बस मेरे सामने ही हो, ड्राइव कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या बस इंतजार कर रहे हो. लेकिन हाँ, आमने सामने तो हम भी है. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आफरीन जुड़ गई है आपके साथ विथ येट अनदर सवाल, येट अनदर मूवी. और आपने गेस करनी है ये मूवी है कौन सी. वेल, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता दो, इस वक्त पर आफरीन जनरली एक सवाल आपसे पूछती है, रादर एक सीन आपको सुनाती है एंड आपको गेस करना होता है दैट दिस सीन इज फ्रॉम विच मूवी. ठीक है, सो अच्छा खासा रिफ्रेश होकर आए हो ना आप वीकेंड से, थोड़ा सा दिमाग को चलाओ और आज का थोड़ा सा सीन ना मेरे ख्याल से पेचीदा हो सकता है आपके लिए. सो हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता, प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी है.
0: All right, I think so. The background music really gave it away, है ना? 5001896 is my number. और background music जो थी ना मेरे ख्याल से उसी से आप पहचान सकते हो कि that this movie कौन सी है, क्योंकि मैं आपकी जगह रहती हूँ ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ कि ये movie कौन सी है just by listening to the track या scene. So with this 5001896 is my WhatsApp number and I'm getting a lot of messages. यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, फराज का मैसेज है एंड येस द लिस्ट इज जस्ट ऑन एंड ऑन. कुंवर का मैसेज है, सो लेट मी गो एंड चेक आउट द मैसेजेस. तब तक के लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला गाना एंजॉय करो. राइट रन विद शी इज हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: Well, that is Aditya ki awaaz mein ye gaana right here. A beautiful, meetha sa gaana. Chhota sa, cute sa, sweet sa. Right to Ranveer ji. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai this beautiful morning. Aur yes, yahan par bahut sare sawal jawab ka silsila chal raha tha. Well, ek sawal aapse maine yahan pucha tha. Ek movie ki scene maine yahan sunaya tha and aapne guess karna tha ki aakhir ye kaun si movie se. And I've got a mix of answers, honestly. Pehle hum sawal sunte hain, uske baad mein hum uske jawab ki taraf jaate hain. So here it goes. Lights, camera, scene test.
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी है, प्यार का मतलब सिर्फ प्यार को पाना नहीं, प्यार किसी और।
0: All right, this is good enough. और क्या आपको ये लगा, क्योंकि ये वायलेंस की आवाज आ रही है और जनरली हम कहते हैं ना कि प्यार में हो पड़ते हो तो वायलेंस बजने लगते हैं हमारे आसपास, जैसे मोहब्बतें मूवी में होता है. सो दैट इज द रीजन ना, कई लोगों ने कहा कि ये मोहब्बतें का डायलॉग है, लेकिन नो माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट मोहब्बतें, बट वॉट इट इज.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: I hope you're doing well, Afreen.
0: I am
3: good.
0: Well.
3: Good morning to all the listeners.
0: Yes.
3: This movie is Mujhse Dosti Karoge.
0: Okay.
3: 2002 released.
0: All
3: starting
0: right.
3: Is Hrithik Roshan, Rani Mukherjee and Kareena Kapoor.
0: Okay.
3: Happily listening. Take care. Drive safe. Thank you.
0: All right, that is the right answer. और ये right answer जो है हमें कुमार ने भेजा है. And कुमार, you know what? I'm going to give you a good compliment this morning. तुम्हारा दिन बहुत खूबसूरत जाएगा. Whenever I listen to your voice track, I feel I am listening to my fellow RJ or someone because you've got a very clear and audible voice. So yes, ये बस कहना चाहती थी. So well with this, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के messages आए हैं. मानसी का message है, if I'm right. मनाली और मानसी it is. संजीवा का मैसेज है सेइंग द राइट आंसर. त्रिशा का मैसेज है, शी इज आल्सो सेड द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे शैलेश ने कहा है मोहब्बतें. नो माय फ्रेंड, इट इज नॉट मोहब्बतें. फराज का मैसेज है विद द राइट आंसर. कुंवर पांडे का मैसेज है. मोहसिन अब्दुल रहमान, मोहम्मद यूसुफ खान, खुमैल, सुलेमान. सुलेमान एंड खुमैल, लेट मी टेल यू, आर द फर्स्ट पीपल हु ऑलवेज मैसेज सबसे फास्ट. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होते हैं ये. विद दिस उदित नारायण की आवाज में ये एक गाना जो शायद मैं अपने आप को डेडिकेट कर दूं कभी. सांवली सी एक लड़की. राइट, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: बालकनी का दरवाजा खुला रखता हूँ तो कबूतर अंदर आ जाते हैं और पूरा रूम गंदा कर देते हैं, क्या करूँ?
1: अरे तो कबूतरों को बोलो कि चप्पल बाहर निकाल कर आए।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6 Mirchi 1.
0: It's hot.
3: Mirchi Mornings पर आफरीन का साथ है आपके साथ right here और अगला गाना आवारा पंटू से coming up your way and मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8 बजे की तरफ. You stay tuned with me on Mirchi. It's hot.
0: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिलता है अरिजीत सिंह की आवाज में आवारा पंटू का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, और सीधा डाइव इन करते हैं हमारे आज के गोल्ड रेट्स पर।
1: गोल्ड अपडेट।
0: Well, देखिए आज का गोल्ड अपडेट ये कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 584 कतरी रियाल, वेयर एज पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2737 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5405 कतरी रियाल, वेयर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16707 कतरी रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 62038 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट। सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन दाम हमेशा पता रहना चाहिए। विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आफरीन आपके साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी, इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app.

0: Energy. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. Grábala. Burga, burga. La virtual la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं? आपको
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर, सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल

0: तो सर आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
0: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर, आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है, देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
0: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
0: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में,
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
0: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
0: लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

देखो कौन कहता है कि आज के जमाने में हमें 90s वाले गानों के फील नहीं मिल सकते हैं। लुक एट दिस सॉन्ग या उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में, दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुपर 30, जो नॉट सो लेटेस्ट बट यस कह सकते हैं हम लेटेस्ट, तकरीबन लेटेस्ट मूवी का ही है, 2010 के बाद की ये मूवी का ये गाना, जो कम्प्लीटली 90s की इतनी खूबसूरत वाइब देता है। एंड आई जस्ट लव दिस ट्रैक या गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और चलिए जरा फटाफट से देखते हैं एक्सचेंज रेट क्या कहता है आज का। वेल आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.19, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज आपको एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं 76.06। श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.15। एक कतरी रियाल के बदले आपको बांग्लादेशी टाका मिल रहे हैं तकरीबन 33.82 टाका। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीस 41.87। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला 89.6 FM पर आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
0: रेडी
5: रेडी
0: टू लर्न
5: यस
0: टू प्ले
5: एब्सोल्युटली
0: टू ग्रो
5: विद मेजराती।
0: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
0: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
6: The show was absolutely amazing.
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

Well, Preeti Pinky ki awaaz mein, Shekhar ka saath, right here, this song from the album Rehna Hai Tere Dil Mein. And I'd like to talk something about this album here. एक ऐसा म्यूजिक एल्बम जिससे हर 90s वाले हर मिलेनियल बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है. ये सुनो, क्योंकि यार इसका एक नहीं दो नहीं, देयर आर सो मेनी ट्रैक्स इन दिस एल्बम व्हिच आर सो ब्यूटीफुल. हरीश जयराज की कंपोजिशन है और समीर के लिरिक्स है मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में. एंड व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स यार. एंड मैंने आज ये वाला गाना ना खास चुनकर बजाया है बिकॉज आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द अंडररेटेड सॉन्ग ऑफ दिस एंटायर एल्बम. बिकॉज यार एल्बम में गाने ही इतने खूबसूरत हैं. सच कह रहा है दीवाना, दिल को तुमसे प्यार हुआ जरा जरा. आई जस्ट लव दिस म्यूजिक एल्बम. इज देयर एनीवन हु लव्स रहना है तेरे दिल में के सारे गाने जस्ट लाइक मी? देन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज 5000196. अब जहां मेरी बात हो गई है अबाउट दिस ट्रैक, क्योंकि मैं रोके ना रोक सकती हूँ टॉकिंग अबाउट दिस मूवी एनी टाइम. सो लेट्स गेट टू द पॉइंट, यानी मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खेलने का वक्त आ चला है. मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. वेल माय बंधुओं, आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में आई हैव अ सर्टेन स्टार कास्ट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस मूवी में और आपने गेस करना है वेल आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है. सो अर्ली 2000 की मूवी है, एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है. और इसमें है बॉबी देओल, ओके. इसमें है बिपाशा बासु, इसमें है अक्षय कुमार, इसमें है करीना कपूर एंड जॉनी लीवर. बहुत सारे नाम बता दिए मैंने. वो कौन सी मूवी है बताइए मुझे जिसमें बॉबी देओल है, बिपाशा बासु है, अक्षय कुमार है, करीना कपूर है एंड जॉनी लीवर भी है. द नंबर इज 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यहाँ पर आकर आप बता सकते हैं कि आखिर आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है. और ऑलरेडी मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आ गया सेइंग दैट इट्स वेरी इजी आफरीन. अच्छा जी, चलो ठीक है, आपका जवाब भी सही. अहमद मोहम्मद का मैसेज है. देन आई हैव योर उपेंद्र शर्मा मैसेजिंग. सो वेल 5000196 इज माय नंबर. फटाफट से इधर आकर मैसेज करो. बॉबी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर, बिपाशा बासु कौन सी मूवी में एक साथ फीचर करते हैं. तब तक के लिए बादशाह तुलसी कुमार अभिजीत की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

Raheem Abdullah ki awaaz and a beautiful gaana, title track of the movie Sayyara, right here on Mirchi. Main hu Afreen. और बड़ा ही आसान सवाल पूछा था मैंने, ऐसा आप कह रहे हो, मुझे तो डिफिकल्ट लगा यार, बड़े ही जबरदस्त बॉलीवुड फैन हो आप लोग. वेल, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लेट मी टेल देम कि यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खेल रहे थे हम, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जहाँ पर एक मूवी का स्टार कास्ट जिसमें से निकला था, मैंने बताया था कि इसमें ये कैरेक्टर्स है, एक्टर्स है ब्रदर, एंड यू हैव टू गेस विच मूवी इज इट. सो वेल, इस मूवी में बॉबी देओल थे, अक्षय कुमार, करीना कपूर, बिपाशा बासु, जॉनी लीवर, एंड विच मूवी इज दिस. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, जैसे इधर पर किसका मैसेज है, ये अपना नाम लिखा करो यार. यस, ऑफकोर्स प्रिंसन का मैसेज आया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, राज नाम तो सुना होगा, नाम ले लिया ना राज, ठीक है, उपेंद्र शर्मा एंड अहमद मोहम्मद, एंड यस, इस तरह से सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. दैट आफरीन, द मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट इज द मूवी अजनबी, अ प्रॉपर अब्बास मस्तान का थ्रिलर सस्पेंस. एंड ऑनेस्टली बहुत अरसा हो गया है कि वो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल अब्बास मस्तान का कुछ सस्पेंस वाली मूवी ना हमारे अभी इंडस्ट्री में आई नहीं है, एंड इट शुड कम आई फील. विद दिस लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक. अजनबी मूवी का ये गाना, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, एंड दिस इज द रीजन I have asked you this question honestly. Adnan Sami aur Sunidhi Chauhan ki awaaz mein. Right here, my Sidhil Tagafreen ke saath bane rahiyega. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Well, Mirchi Mornings पर आफ्रीन जुड़ गई है आपके साथ right here on 89.6 FM. और देखिए this Sunday morning यानी हफ्ते का पहला दिन, एनर्जी चाहिए. एंड टेल मी, दलेर पाजी से बेटर कौन एनर्जी दे सकते हैं अपने गानों में. सो कमिंग अप नेक्स्ट 90s इंडी पॉप का दलेर पाजी का एक गाना right here on Mirchi. और Mirchi घड़ी का इशारा हो रहा है exactly सुबह के 9 बजे की तरफ. यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज बैक टू बैक पंजाबी तड़का लगने वाला है और Mirchi.
0: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

बलदारवास पंजाबी एमसी की आवाज में तड़कता भड़कता पंजाबी ट्रैक हियर राइट हियर टू गिविंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी दिस वीक वीकडे यस दिस वीकडे मॉर्निंग वो क्या है ना मुझे संडे से मतलब एग्जैक्टली वीक मोड में आने के लिए ना थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि मेरा ना ख्याल थोड़ा सा वीकेंड में अटका हुआ रहता है कि यार ये किया था वो किया था ये कर सकते हैं अगले वीकेंड ये करेंगे एंड ऑल जो है क्या है दिस इज व्हाट जनरली हाउ माय ब्रेन ट्यून्स ऑन संडे मॉर्निंग. वेल यू टेल मी यार तुम लोग संडे को इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो क्या मतलब जो काम के लिए आप आए हो सुबह में यू कैन जस्ट फोकस ऑन इट या फिर आपको ना फोकस पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है जैसे मुझे तो जरूर लगता है. एंड यू नो व्हाट सॉन्ग्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स मतलब ये पहले से बचपन से मैं जब पढ़ाई भी करती थी स्कूल कॉलेज की अगर मुझे पढ़ाई में फोकस चाहिए ना यू वोंट बिलीव मैं गाने सुनने लगती थी. सो वेल इफ यू आर ऑल्सो लाइक मी यू जस्ट लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स देन गिव मी अ शाउट आउट 5000196 इज माई नंबर. मीन वाइल खतर की खबर लेकर आ रही हूँ इस गाने के उस पार तब तक के लिए मितरो और स्वरा वर्मा की आवाज़ में अगला गाना. एंड एक चीज़ देख रहे होगे कि पंजाबी से अब थोड़ा सा हरियाणवी डायलॉग यहाँ पर आ रहा है मतलब रीजनल गाने का मजे ले रहे हैं हम इसे बरकरार रखते हुए अनमिर्चित साथ

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Escabana, puscabana, sacabana,
1: rabana,
0: murga, murga, la vieja la murga,
1: Milchi murga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: हैंड मिलता है,
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है, बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर

0: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: वेल बनी दयाल और हिमानी कपूर की आवाज में आई लाइक दिस गाना बैंड बाजा भारत से राइट हियर ऑन मिर्ची. देखिए कतर में अगर हाउस हेल्प रिक्रूट करना हो तो ऑनेस्टली बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, एजेंसी, वीजा, कॉन्ट्रैक्ट, मेट्रैश. अब इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफरीन है आपके साथ और खबर ऐसी लेकर आई हूँ.
1: क्या खबर कतर?
0: दैट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का मुआवेन, इफ आई एम राइट, ठीक है, MOAWEN, दिस इज द प्लेटफॉर्म नेम, इसका प्रोनंसिएशन आई होप इट इज मुआवेन. बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स रिक्रूट करने का एक और ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटल प्रोसेस है ये. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो पहले मेट्रैश से रिक्रूटमेंट वीजा अप्रूवल है, फिर मुआवेन पर लॉग इन करके अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करनी है आपने, वहां लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऑफर्स कंपेयर कर सकते हैं आप, डोमेस्टिक वर्कर का इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, कॉस्ट फाइनलाइज कर सकते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करके आप साइन कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट फीस भी डिजिटली ही पे करना है आपने. फिर उसके बाद वीजा और कतर वीजा सेंटर अपॉइंटमेंट मेट्रैश के थ्रू होता है और इवेंचुअली QID इशू होने के बाद डिटेल्स मुआवेन पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड आई होप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ रहेगा. अगर आप कहीं सोच रहे कि डोमेस्टिक वर्कर आपको चाहिए, हाउस हेल्प आपको रिक्रूट करना है तो, और वेल अगर थोड़ा और भी कंफ्यूजन है, देन मुआवेन इज द एप्लीकेशन जो आपके लिए और भी ज्यादा ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा. बस ऐसे ही कतर से जुड़ी हुई खबरें मैं लेकर आती हूँ राइट ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स. आप बने रहेगा मेरे साथ शिल्पा राव और सचिन टंडन की आवाज में. ये अगला गाना कमिंग योर वे एंड सून आफ्टर दैट बहुत ही प्यारे अर्ली 90s और 2000 के गानों का सिलसिला रहेगा और उसी बीच में हमारी शायरी भी आएगी ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: topics. It's hot. Mirchi stories.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभिजीत सावंत की आवाज में ये गाना, आई जस्ट रिमेम्बर ऑल दोज डेज ऑफ द रियलिटी शो जहाँ पर हम इतने शौक से ये देखा करते थे, एंड दीज शो एक्चुअली फेल्ट रियल बैक दोज डेज, है ना। और लफ्जों में कहने के लिए ही तो यहाँ पर हम आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और ये वो वक्त है जब आफरीन ना सच में बहुत ही ढूंढ कर और हमेशा ना एक कलेक्शन ऑफ शायरीज रखती हैं अपने पास, और बस उसमें से खास जो होते हैं मेरे दिल के करीब जो होते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर सुनाती हूँ। और आज की जो शायरी है वो कुछ इस तरह से,
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो मिल गया होता, या तो मिल गया होता, या मिला ही ना होता। हाय, ये बहुत सारी चीजें हैं ना जिंदगी में हमारे जो आकर भी पूरी तरह से हमारी हो नहीं पाई है। अब वो क्या है आपके लिए आप खुद ही जानिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और बस इस खूबसूरत सी शायरी के बाद अनदर वंडरफुल ट्रैक बाय माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर दैट इज अमित त्रिवेदी की आवाज, साथ ही साथ मिली नायर की आवाज, फ्रॉम द मूवी काय पूछे ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में दैट सॉन्ग फ्रॉम वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवी. आई थिंक सो दिस हैज टू बी द नंबर वन फेवरेट मूवी ऑफ माइन एंड एक्चुअली आई मीन इट. ऐसे इतने खूबसूरत गाने के बाद अलाउड है मुझे बात करना? मतलब नो यार, मैं अगर ये गाना सुनू आई जस्ट वॉन्ट टू बी लॉस्ट इन सच सॉन्ग. व्हाट अ ब्यूटिफुल ट्रैक. हम आपके हैं कौन से ये गाना. एंड आई वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस सॉन्ग इज, या मुझे याद आता है इस गाने के बारे में, वो पिंक कलर का ड्रेस जो माधुरी ने पहना था विद द पर्ल नेकलेस और वो प्यारी सी हेयर स्टाइल एंड दैट ब्यूटिफुल ग्लिटरिंग स्माइल एंड ऑफकोर्स सलमान खान के वो जैज वाले मूव्स. और ओह माय गॉड, सो मेनी मेमोरीज है ना. मतलब कुछ गाने जब हम सुनते हैं ना तो सीधे उसकी जो वीडियो है वो हमारे जहन में आ जाती है. एंड दिस इज वन सच मूवी. आई थिंक सो 100 माइट बी अ लोअर नंबर. आई माइट हैव वॉच्ड दिस मूवी फॉर एटलीस्ट 150-200 टाइम्स. बहुत बार ये मूवी मैंने देखी है. सो वेल, बॉलीवुड के थोड़े से ये मेरे डिल्यूशनल वर्ल्ड से मैं बाहर निकलती हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे शो का टाइम यहाँ पर खत्म हो गया है और बस जाने का वक्त आ चुका है. और आपको यही कहना चाहूँगी जाने से पहले कि भाई नया हफ्ता शुरू हुआ है, बड़े ही अच्छे से अच्छे मूड के साथ में शुरू कीजिएगा और खुश रहिए. हमेशा कहती हूँ कि अगर आप खुश रहते हो ना तो सच में बहुत फ़र्क पड़ता है. आपके एक जो वाइब क्रिएट होती है, एक जो ऑरा आपका बन जाता है और उस वजह से ऑल थिंग्स फॉल इन प्लेस. तो बस ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए, खुश रहते हुए, कुछ ना कहते हुए अब अगले गाने की तरफ मैं बढ़ती हूँ क्योंकि गाने का नाम भी कुछ यही है, कुछ ना कहो. शान और साधना सरगम की आवाज में टाटा बाय बाय सायोनारा. अपना ख्याल रखिएगा. माइक से दिल तक आफरीन लेना चाहती है अलविदा. इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरी सास और मेरी बहुत तूतू मैं में होती है और उनको हर बार बुरा लग जाता है, क्या करूं?
1: तू ना अगली बार से उनसे तूतू मैं नहीं, आप हम कर। रिस्पेक्ट देगी तो बुरा भी नहीं लगेगा।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: जैस्मिन सैंटोलस की पावर पैक आवाज, गैरी संधू का साथ। एंड भाई साहब, इस वेपन को इलीगल ना कहें तो फिर किसे ही कहें।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मतलब इस गाने की बात कर रही हूँ मैं, और इस गाने की हर एक बीट की बात कर रही हूँ, जो अगर दिल को देखने की कोशिश करें तो भाई हर जगह ठाई से लगती है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बीटी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, एंड आपके साथ मिलकर एक नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार। वेल, जेन्युइनली इस वक्त अगर मैं वक्त को देखने की कोशिश करूँ भाई, रफ्तार मुझे सिंगर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ स्पीड का ज़रूर पता है। क्या गजब तरह से वक्त निकल रहा है, मतलब ना जाने कितने सारे दिन स्कूल्स में, इस वक्त एग्जाम्स भी शुरू हो गए, गर्मी की छुट्टियां निकली, बच्चों ने स्कूल्स रिज्यूम किया, एंड एक बार फिर से वो पर्चा खोलने का वक्त जो है ना वो आ ही गया। पता है क्या, जो बचपन के दौर में मुझसे कहा गया था ना कि भाई अभी पढ़ लिख लो उसके बाद जिंदगी भर ऐश करना, भैया पूरा का पूरा सिनेरियो जो है इन दिनों बदल सा गया है। मतलब हमने खुद को पढ़ाने के लिए पढ़ाई की, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए पढ़ाई की, फिर लगा कि भाई कॉलेज में आ जाते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है उसके लिए पढ़ाई की। एंड अगर आज के डेट में माँ बाप के सिनेरियो को देखने की कोशिश करूँ तो जितना इन लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज टाइम पर पढ़ाई नहीं की ना, आज के डेट में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बस वक्त ने अपनी गति स्पीड पकड़ लिए, बच्चों की जिंदगी में एक नया चैप्टर एग्जाम वाला ले आया है, लेकिन बच्चों से ज्यादा माता पिता जो हैं उनकी परीक्षा हो चुकी है शुरू। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी बात में दम है, बात जो है 101% सही है, तो थम्सअप वाला ये जो इमोजी होता है ना, मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। 5000 1896 5000 1896, ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर गुड मॉर्निंग एज वेल। साज भट्ट की आवाज सुबोध शर्मा का साथ, एक बार फिर से ये रिवाइज्ड वर्जन इस प्यारे से गाने का आप तक पहुंचाती हूँ। एंजॉय करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत। स्टे ट्यून्ड।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirci, burka. हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग।
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो।
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं
1: रहे हैं।
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे
2: नहीं, असली नहीं। एक सेकंड मैडम रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ।
1: हाँ वही बात कर,
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही। हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?

0: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
2: This show was absolutely amazing.
3: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मरूमी एंड अनुष्क बाक्शी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। लेकिन सच कहूँ ये एक किरदार ऐसी है जिसके ना आने से मम्मी की आंखें जो है ना लाल पीली नीली ना जाने कौन कौन से रंग की बस हो ही जाती थी।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो अगर मैं अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य की बात करूं तो उस लिस्ट में नाम टॉप पोजीशन पे ना मेरे पापा का आता है, ना मेरे दादा दादी का, ना मेरा, ना किसी और का। भैया मेरी मम्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई हुआ करता था सो दैट यूज्ड टू बी हमारे घर की वो काम वाली दीदी। वो क्या एक दिन लेट आई, भाई देखो पूरा घर का घर आसमान में कैसे उठाया जाता था। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर की कहानी मेरे घर की कहानी से जरूर मिलती है। चलिए जी, लेकिन मेरे पास इस वक्त आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज, आपके उस घर ना सही लेकिन हाँ इस घर पे मैं किसी हेल्प को लाने का बंदोबस्त कर ही सकती हूँ। अगर अगर आपको लगता है कि आपको एक हाउस हेल्प की जरूरत है तो इस वक्त ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है थ्रू मोआविन प्लेटफॉर्म, MOAWEN प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको मेट्रोश में जाकर रिक्रूटमेंट अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास प्रायर अप्रूवल है तब तो भी आप सीधा जो है मोआविन प्लेटफॉर्म में जाकर लॉगिन कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो अप्रूवल मिलते ही आपको लॉगिन करना होगा मोआविन प्लेटफॉर्म में। वहां पे आपका ये प्रोसेस अप्रूव हो गया है, इसका मैसेज जो है वो आ ही जाएगा एंड उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी आसान है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे स्पेसिफाई करना है, बहुत सारी एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है, जो भी हेल्प आपको पसंद आया उसे इंटरव्यू जो है आप स्केड्यूल कर लीजिए एंड उसके बाद तो क्या है रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉस्ट एंड बाकी सारी बातों में अग्री करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है पेमेंट भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। मेट्रोश एप्लीकेशन के जरिए ना ही सिर्फ वीज़ा इशू किया जाएगा बल्कि वीज़ा सेंटर का अपॉइंटमेंट भी आपको वहीं से मिलेगा। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो वो है मेट्रोश एंड उसके बाद मोआविन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। जब घर पे हेल्प आ जाए, काम का लोड ज़रा कम हो जाए तो भैया दावत वगैरह में बुलाना और क्या, एंड इससे जुड़ी हुई कोई और डिटेल चाहिए तो बस मुझे 5000 1896 पर मैसेज करें, मैं बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। तो फिर आओ, नहीं अगले गाने का नाम सुबोध शर्मा की आवाज़ में आप गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने जरूर आना। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: हरित सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली, व्हाट अ सोलफुल ट्रैक इट इज़। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिन्हें आप लूप में लगाकर नॉन स्टॉप सुन सकते हैं, तो जब जब ये गाना मैं सुनती हूँ मेरे जहन में ऐसा ही कोई ख्याल आता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे एक बात बताऊं कि जब ये फिल्म रिलीज हुई एंड साथ में ये गाना आया तो उस दौर में इस गाने को भी इसी तरह लूप में लगाकर सुना गया। अब जिस फिल्म का कोई तो बैकग्राउंड स्कोर मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, ये जो फिल्म थी ना ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। कईयों को लगा कि भाई ऐसी फिल्म बनाने का आखिर का रीज़न है तो है क्या, करण जौहर करना चाह रहे हैं तो क्या ही करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री के कई लोगों ने करण जौहर को फ़ोन कर ये भी सवाल पूछा कि तुम समाज में किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो। वहीं एक दूसरा पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा था जिन्होंने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये एंटरटेनमेंट का मीडियम है, शायद कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ होती भी होगी। अब फिल्म के आगे पीछे की कहानी तो मैंने आप तक बहुत पहुंचा दी, अब उस फिल्म का एक धुन मैं आपके बीच पहुंचाऊंगी। आपको उसको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है और मुझे फटाफट से ये बताना है कि जो मैंने इतनी बातें कही हैं आखिरकार मैंने किस फिल्म की कही है और ये जो धुन है ये किस फिल्म से है। करेक्ट आंसर कहां देंगे आप? एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896, 5000 1896, वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। लेकिन जब जब आप सही जवाब अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भेजते हैं ना तो खुशी मुझे ज्यादा होती है। सो हियर वी गो। ऑलराइट, इतना हिंट जो है ये काफी है। जल्दी बताओ कि ये मेलोडियस सी धुन सुनी तो आखिरकार किस फिल्म में सुनी, किस गाने की कहानी बयां कर रही है ये? 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल 90s की नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करते हुए शान की आवाज में ये एक अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते। एंजॉय 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
5: The Mentalist, Sohani Shah.

Well, श्रुति रानी की खूबसूरत सी आवाज एंड ये गाना ऐसा है जब ये रीमेक होकर हमारे कॉलेज टाइम्स में आया, I'm pretty sure हमें से ना जाने कितने लोगों ने कॉलेज के फंक्शंस में इस गाने में परफॉर्म किया, जरूर किया, नहीं शादियों में भी इस गाने में खूब नाचा गया है वैसे। यार पता है मुझे गानों की

0: सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाने से हमारी जिंदगी की खास मेमोरी जो है वो जरूर जुड़ी होती है। चलिए आपसे कुछ देर पहले कोई तो एक खास धुन है जो मैंने आपके बीच पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। आई डू वन थिंग फॉर द सेक ऑफ पीपल हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से इसे फिर से सुनाती हूँ एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने पहचान लिया है तो करेक्ट आंसर भेज देना 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो। ऑलराइट, इसे जरा अधूरा छोड़ते हैं क्योंकि पूरा करने का काम तो हमारी ऑडियंस करेगी, हमारे लिसनर्स करेंगे।
1: हेलो मिर्ची, माय नेम इज अर्जुन, द मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट इज कभी अलविदा ना कहना।
2: गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है गाने का नाम तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी और
3: हाय अंशु, मूवी का नाम था कभी अलविदा ना कहना।
0: आप लोगों ने जो कहा ये पूरी तरह से सही कहा, ये बात तो तय भैया, अपनी सातवीं कक्षा की किताबें तुमने सही तरह से पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन हाँ फिल्मों की पूरी किताबें जो है ना सही तरह से पढ़ी है। पर इस फिल्म की अगर बात करें, साल 2006 में रिलीज हुई ये फिल्म कभी अलविदा ना कहना। यार करण जौहर एक ऐसी फिल्म जिसने उस वक्त प्यार से ज़्यादा शादी और रिलेशनशिप्स पर सवाल खड़े किए बस लेकर आए, जहाँ पर एक तरफ उन्होंने डायरेक्ट किया, प्रोडक्शन की बात करें तो उनकी मम्मी यानी कि हीरू जौहर ने किया एंड इस फिल्म में अगर हमको कोई नज़र तो वो है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति, अभिषेक बच्चन, साथ ही अमिताभ बच्चन एंड करण खेर। एंड म्यूजिक की बात करें तो क्या कमाल का चुम्मा वाला म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय। लेकिन चलिए इस फिल्म की ना एक इंटरेस्टिंग सी इनसाइड स्टोरी आपको बताती हूँ। करण जौहर को रिपोर्टेडली ये फिल्म का आइडिया आया लंदन में, उन्होंने बिफोर सनसेट देखी थी एंड उसके बाद ना वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जहाँ पे एक मैरिड कपल को सरप्राइजिंगली कामली उन्होंने अपनी मैरिज को ख़त्म करते हुए देखा। बस वहीं से उनके दिमाग में एक थॉट आया कि क्या हो अगर दो लोग टेक्निकली शादी में हों लेकिन इमोशनली उस रिलेशनशिप में ना हों, एंड इसके साथ अगर कुछ हमारी ज़िंदगी में आई सिनेमा में सो दैट वॉज कभी अलविदा ना कहना। Well, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसे कईयों ने अप्रिशिएट किया, कईयों ने अप्रिशिएट नहीं किया, जिंदगी की असलियत को भी काफी हद तक बताती है। लेकिन यार एक खास मैसेज जो है ना रिश्ते को लेकर ये फिल्म जरूर बताती है, वो क्या है आपसे कुछ देर में बताऊंगी। अभी फिलहाल जिस गाने का धुन सुनाया था वो गाना आप तक पहुंचा दूं, सुनने का मैं अलका याग्निक की आवाज एंड एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची 89.6 मिर्ची 101.5।

0: What a lovely track it is, yeah. Shri Ramchandra ki awaaz. And sach kahun yaar, matlab dil mein utarne wale gaane ki baat karo na, Shilpa Rao ke magic ke saath from the film Ye Jawani Hai Diwani. Ye kaam meri zindagi mein zaroor karta hai.
1: Mirchi Anshu.
0: तो आपसे कुछ देर पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने और हमने आज का डिस्कशन शुरू किया एक फिल्म के जरिए. एंड उस फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. यार क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी किसी रिलेशनशिप में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? देखो, घर है, जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी हो रही हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, हम रोज़ एक दूसरे के आसपास भी हैं, फिर भी दिल के किसी कोने से कहीं से आवाज़ आती है कि भाई कुछ तो मिसिंग है. यू नो व्हाट, वो मिसिंग चीज़ आखिरकार क्या है? उसका नाम है इमोशनल कनेक्शन. क्योंकि बात इतनी है ना कि किसी के साथ रहना और किसी से जुड़ कर रहना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है बॉस. इमोशनल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ घंटों बैठकर अपनी फीलिंग्स को बस डिस्कस करें. भाई इसका मतलब ना काफ़ी सिंपल है कि सामने वाला कहे कि मैं ठीक हूँ और आप उसकी आंखों को देखकर समझ जाएं कि नहीं यार, आज कुछ तो हुआ है, कुछ तो ठीक नहीं है. वो चुप है लेकिन आप उसकी खामोशी पढ़ सकें. सामने वाला थका हुआ है फिर भी आपने और आपके काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप चुपके से बस यही कह दो कि यार तुम रहने दो ना, आज मैं संभाल लेता हूँ, या बिना कहे आप संभाल लो. Now this is known as emotional presence. यार आज की इस materialistic दुनिया में ना हमें लगता है कि किसी को बड़े बड़े तोहफे दे देना, उनकी financial ज़रूरतों को पूरा कर देना, मतलब उनके लिए सब कुछ कर गुजरना है. लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि जो gift emotional support देता है ना बॉस, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता. वो कहते हैं ना कि अगर पास रहकर भी दिल की खबर ना हो तो साथ से बड़ी कोई दूरी नहीं. रिश्ते हाथ थामने से मुकम्मल नहीं होते, दिल थाम लो फिर देखो जिंदगी में कभी कोई मजबूरी नहीं. अगर ये बात सही लगी तो एक ही काम करना है, मुझे थैंक यू अंशु वाला मैसेज जो है वो भेजना है, नहीं तो आई अग्री ये वाला मैसेज भेजना है. 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल रूमी एंड श्रेया घोषाल की आवाज में एक नया सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना, आप तक एंजॉय. 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: Milchi. Escabana, poscabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल।

0: पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार, महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास, पागल कहीं का।
1: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि है।
1: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
2: कुकड़ू
1: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई,
1: आप खत्म कर दो यार।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीडी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: Well, Adnan Sami ki khoobsurati awaaz, what a lovely track it is, man. I just absolutely fall in love with music the moment I get to hear such melodious tracks. Kya gaana yaar? Mirchi Anshu. देखिए गुरु जी, बात इतनी है ना कि अनकहीं बातें हों इसके लिए आपको बिना कुछ कहे सुने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए. मतलब ऐसा कुछ करो कि घर वाली जो है यू नो, तुम्हारी बिना कहीं बातों को पूरा करने लगे, सुनने लगे. तुम्हारे जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी तुम्हारे एहसास हैं, वो तुम जैसे चाहते हो वैसा सब कुछ हो, उसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना. पहले अगर लेडीज़ की हम बात करें, उनकी ज़िंदगी की असल खुशी की बात करें, तो सोना, कितना सोना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता. सोना बस आता रहे इस बात पर डिपेंड करता है. तो ज़रा देखिए यह मौका भी है, दस्तूर भी. आज अलफरदान एक्सचेंज में गोल्ड अपडेट क्या कहता है.
1: गोल्ड अपडेट.
0: Well, अगर आज आप परचेज करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार, टुडेज प्राइस एट कतरी रियाल्स 584. टॉकिंग अबाउट 5 ग्राम्स, इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 2737. अगर 10 ग्राम की मैं बात करूँ सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 5405. 1 ounce इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 16707. एंड साथ ही अगर 10 तोले की बात करें गुरु, सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 62038. घर भेजे ढेर सारा सोना और घर में लाएं खुशियां. Enjoy Bandi ka naam Anshu.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

Well, Kiki, Shan, Kunal Ganjawala, what a terrific combination. What a lovely track it is from the film Sathya. And kya kamal gazab ki composition by the legendary A.R. Rahman. Bhai Rani Mukherjee and Vivek Oberoi genuinely ek dusre ke liye bane hain. Ye film jo hai na, ye baat puri tarah se bayaan karti thi, at least on screen. Mirchi Anshu. वेल सच कह रही हूँ, जिंदगी में सुख की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक चीज़ें जो खुशी देती है ना, दुनिया में कोई और आपको उतनी खुशी कहाँ देना। आई एम टॉकिंग अबाउट रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब रहने के लिए एक साफ सुथरा अच्छा सा घर हो, आलीशान महल ना हो लेकिन अच्छा घर हो जहाँ जाकर सुकून आए, एंड कुछ ऐसे लोग हों जो उस मकान को घर बना सकें, साथ ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, एंड भैया बेसिक नेसेसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि अच्छा खाना पीना, ये तीन चीज़ अगर आपके साथ है, सच कह रही हूँ, और उसे कई गुना ज़्यादा ब्लेस्ड एंड काफ़ी हद तक खुश हैं आप, इसे कभी भी अंडरएस्टिमेट ना करना। अब एक काम करते हैं जी, आज खाने की कोई तो डिश है जिसकी कहानी मैं इस वक्त आपके बीच बयां करने वाली हूँ, उसे सुनना है, पहचानना है, फटाफट से मुझे ये बताना है कि ये है तो है कौन, एंड अगर करेक्ट आंसर आपने पहचान लिया तो मुझे सही जवाब देंगे 5000186 पर, 5000186। वी विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। वेल, ना समोसा ना कचौड़ी फिर भी गोल मेरा हाल, अरब की गलियों में मैं मिलता हूँ बेमिसाल, देखो भाई चने का हूँ तेल में नहा के आता हूँ और हवस के साथ मिलकर सबके दिल को चुराता हूँ, बताओ मैं हूँ कौन, ना ये समोसा है ना ये कचौड़ी है लेकिन इसका हाल जो है बड़ा गोल सा है, अरब की गलियों में मिलता हूँ मैं बेमिसाल, चने का हूँ तेल में नहा के आता हूँ, हमस के साथ सबके दिल को चराता हूँ, बताओ मैं हूँ तो हूँ कौन। 5000186 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस कि इस पहेली के पीछे आखिरकार कौन सी अरबिक डिश का नाम छुपा है, पहचान में आ जाए तो सही जवाब भेजें अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर। मीनवाइल अनुराधा पोडवाल एंड कुमार सानू जी की आवाज में 90s की नॉस्टैल्जिया को फिर से जीते हुए अगला गाना आप तक एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, इट्स नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: Shraddha Kapoor and Neil Sharma ki awaaz mein, what a lovely track it is, and this is a reprised version. My, kisne socha tha ki Shraddha Kapoor ko hum kabhi gaana gaate hue bhi sunenge.
1: Mirchi Anshu.
0: वैसे सच कहूँ यार, हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी के फेस में ये जरूर लगा है कि भाई अगर मैं कुछ ना होता तो मैं एक सिंगर जो है वो जरूर होता. काश बचपन में किसी ने मेरे इस हुनर को पंख दिया होता. नहीं, हम में से हर कोई ना अपने आप को एक गायक जो है वो जरूर समझता है, ये मानो या ना मानो. वह लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप और हम गाते नहीं है, वरना लोग जो है म्यूजिक से, संगीत से प्यार करना जो है जरा कम कर देते. लेकिन इस डिश की बात करते हैं जिसे आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा प्यार है. ये बात जो है इस बात से प्रूफ हुई कि भर के इसके जवाब जो है आए एंड जरूर आए. वैसे आपसे कुछ देर पहले मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि भैया एक पहेली मैं आपके बीच पेश करूंगी ना, आप जो है उसे बुझाकर मुझे बताएंगे कि ये है तो इसके पीछे कौन से खाने के आइटम की कहानी छुपी हुई. फॉर द सेक ऑफ पीपल हैव जस्ट जॉइंड, मैं जल्दी से एक बार फिर से सुना दूं. ना समोसा ना कचौड़ी, फिर भी गोल है मेरा हाल. अरब की गलियों में मैं मिलता हूं बेमिसाल. भाई चने का हूं, तेल में नहा के आता हूं, लेकिन हुमस के साथ सबके दिल को मैं चुराता हूं. अब देखिए लोग बाग क्या कहते हैं कि ये हैं तो हैं कौन जनाब.
2: Hi, this is Vipresh. It is falafel. Thank you.
3: Good morning, Anshu. कैसी हैं आप? ठीक हैं? ये सब बताओ. ये है फलाफिल. Okay. Thank you.
0: Well, thank you so very much, Yusuf bhai. Thank you, Vipresh. Thank you, Fatima, and all those people who have written and sent over the replies. आवाज में रिकॉर्ड कर भेजते तो ज़्यादा खुशी होती, लेकिन चूंकि आपने लिख कर भी भेजा है, so I really appreciate it. Absolutely. आप सबने जो कहा भाई ये है फलाफिल, अरब की गलियों का राजा, एंड हुमस के साथ अगर ये मिल जाए तो दिल जो है खुशी से गदगद यानी कि गार्डन गार्डन हो जाए. क्या पता है क्या, जब जब फलाफिल मैं खाती हूँ ये क्रिस्पी सा, तो मुझे इंडिया की याद आती है एंड अपने घर की याद आती है. क्योंकि फलाफल से रिजेंबल करती हुई कोई तो डिश है जो हमारे घर में अक्सर बनाई जाती है एंड खासकर फेस्टिविटीज के मौके पर, और हम इसे कहते हैं मूंग दाल का बड़ा. देखिए फलाफल जो है ये छोले से बनता है, चने से बनता है, लेकिन मूंग दाल का बड़ा एज द नेम डिपिक्स ये बनता है मूंग दाल से. लेकिन बाकी इसकी जो रेसिपी है ना 101% सेम है यार. तो जब फाइनली मैं कतर आई एंड पहली बार मैंने फलाफल को ट्राई किया, मेरे को लगा हाय यहाँ पे भी मूंग दाल का बड़ा मिलता है क्योंकि द टेस्ट इज एब्सोल्युटली द सेम. फिर बाद में पता चला कि भाई नहीं नहीं ये तो इसका बड़ा भाई है जिसे हम यहाँ पे फलाफल कहते हैं. अच्छा मुझे एक बात बताना, फलाफल की अगर मैं बात करूँ तो कतर में वो कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे बेस्ट फलाफल मिलेगा यार. आई रियली वॉन्ट टू ट्राई सम. 5000186, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. मीनवाइल फिल्म सैयारा से विशाल मिश्रा हंसिका परीक की आवाज में मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय बंदी का नाम अंशु.

वाला रूप खान की प्यारी सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. भाई साहब ये बंदी जो है ब्रांड्स के बारे में खेल गई, लेकिन अच्छी अच्छी ब्रांड को जो खेल जाए जरा उसकी भी बात हो जाए. मिर्ची अंशु यार सच कह रही हूँ, हम जो है ना बड़े कमाल लोग हैं यार. जिंदगी में सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा ये इवेंट अटेंड करने ज़रूर जाएंगे. ऐसा लगता है कि यार ये बंदी सामने आएगी तो किसी ना किसी हाल में इससे तो 101% मिलना है, लेकिन ज़रूर मिलना है. हमारे पास बहुत पैसे हैं इधर उधर खरीदारी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट भी कई दफ़ा करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, लेकिन जब बात लाइफ में एक्सपीरियंसेस की आती है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मुफ्त में मिल जाए तो क्या ही बात है. खासकर अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करें, यहाँ पर मेंटालिटी मैंने अक्सर देखी कि लोगों को लगता है कि भाई ये इवेंट हो रहा है, हाँ यार गजब है जाना है, लेकिन कब जाना है अगर पास कहीं मुफ्त से मिल जाए. भाई एक बात बताओ, तुम जो काम करते हो जिंदगी में, तुम्हारा बॉस भी तुमको बोले कि भाई बस इतना कर दे कि आज काम जो है ना एक दिन का मुफ्त में कर दे, दिल करेगा करने को? नहीं ना. तो वैसे जो इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं ना, आप सबके लिए किए जाते हैं, दिल से किए जाते हैं, तो क्यों ही उस एक टिकट का बंदोबस्त इंतज़ाम जो है मुफ्त में करने की कोशिश करना यार. एंड खासकर ये पैगाम मैं उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं, तो जब बात उसे एक पास या टिकट की आती है तो वाई डू वी एक्सपेक्ट कि ये कहीं से फ्री में मिल जाए. वेल, आपकी वो एक फ्री की टिकट जो है ना किसी और की ज़िंदगी में उसकी पूरी तरह से रोजी रोटी हो सकती है. तो वेल इतना ही कहना चाहूँगी कि दिल करे कि अगर किसी इवेंट को अटेंड करने का मन है, अगर लग रहा है कि टिकट के प्राइसेस रीजनेबल एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना यार खरीद कर जाया जाए, उसे एंजॉय किया जाए. और एक ऐसे इवेंट की बात करूं जिसे आपको सर्टनली मिस नहीं करना है, सो दैट इज सुहानी शाह. 25th ऑफ सितंबर कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, द डेट इज अप्रोचिंग नियरिंग एंड द अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज अबाउट टू गेट ओवर. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप कॉर्पोरेट से हैं, एक फैमिली पर्सन है, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, व्हाट एवर इट इज, टीचर है, स्कूल में एजुकेटर है, भाई ये एक ऐसा इवेंट है जो हर किसी के लिए जरूरी है, ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बल्कि खुद को पहचानने के पर्पस से भी. जाइए क्यू टिकट्स पर, नूनू सिटी पर, प्लैटिनम लिस्ट पर, हर जगह टिकट्स जो है वो अवेलेबल हैं. टिकट्स जाकर बुक करें एंड आफ्टरवर्ड्स आप और हम मिलकर अपने दिमाग के चारों खानों को चित्त करें. नहीं नहीं वो करी सुहानी शाह. सूरज की बाहों में लिटरली जब जिंदगी हो गई है तो ये गाना भी सुन ही लिया जाए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vipa la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23
3: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo.

0: Sonu Nigam and Mahalakshmi Iyer ki awaaz and what a lovely power pack track it is. I just love the song yaar and bhai kya kamaal ke lage hain is gaane mein. Salman Khan ki baat karu, Priyanka Chopra ki baat karu, har ek shaadi ka anthem jo hai na aaj ki date mein bhi ye gaana zarur bana hua hai.
1: Mirchi Anshu
0: देखिए बात इतनी है कि जहाँ पे ये हर एक वेडिंग का एंथम बना है, वहीं अगर अच्छे एक्सचेंज रेट्स की बात करें, ट्रांसफर की बात करें, तो भैया ये जो है इसका एम्बेसडर जरूर बना हुआ है. किसकी बात कर रहे हैं हम? वेल चलिए आज जो है आप तक दास्तान कहानी हम पहुंचाए दें कि आईपे एक्सचेंज रेट में मनी का क्या बोलबाला है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट इंडियन रुपीज आपको मिलते हैं 26.19. बधाइयां जी. साथ ही पाकिस्तानी रुपीज की बात करूं सो इट इज 76.06. क्या बात है. अगर बांग्लादेशी टाका को आप देखने की कोशिश करेंगे तो इट इज 33.82. एंड ये बात जो है ये 100% सही है. इसके साथ ही अगर नेपाली रुपीज की मैं बात करूं सो इट इज 41.87 एट द मोमेंट. एंड साथ ही लंकन रुपीज जो है एक बार फिर से डंका बजाते हुए हमारी जिंदगी में आ गए विद 90.15. अब एक बात बताओ, तुमने जब भी इस महीने के पैसे ट्रांसफर किए, यानी कि पिछले महीने के जब तुम्हारी सैलरी आई, तो इस एक्सचेंज रेट के आसपास किए थे, इससे कम में किए थे या ज्यादा में किए थे, मुझे जरूर बताओ. पक्का बताओ, मैं वेट कर रही हूँ. 5000186 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. भैया पैसे अगर आज तक संभाल के रखे हो तो वो भी बता देना, वो भी सुन लेंगे. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

नवराज हंस की आवाज, हर्षदीप कौर का साथ, फिल्म का नाम है एक लड़की को देखा, एंड व्हाट अ टेरिफिक पावर पैक ट्रैक इट इज। मतलब कुछ गाने होते हैं ना जिन्हें हम सुनते ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड से रिलेट कर पाते हैं। अगेन दिस हैपेंस टू बी अ वेडिंग ट्रैक इन माय फैमिली। मतलब घर पे शादियों में ये गाना ना बजे ये हो ही नहीं सकता। आपके घर में ऐसा कुछ होता है? मिर्ची अंशु। यार आशना, आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है कहीं ना कहीं मुझे रखने का दिल कर रहा है। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से बचपन का वो दौर याद है जब मम्मी मुझे पढ़ाने बैठा करती थी। दिन भर काम करती थी, काफ़ी थक जाती थी, लेकिन उसके बाद जब वो मुझे पढ़ाती थी तो वो एक घंटे का वक्त जो होता था ना, वो सिर्फ मेरा और मम्मी का है ना। उस समय तो सेलफोन का कोई प्रचलन ही नहीं था, तो ये बात तो बहुत दूर है कि मम्मी मुझे पढ़ाते हुए भी कहीं और एंगेज हैं। पापा भी अगर उस वक्त रूम का दरवाजा अगर खटखटाने की कोशिश करें तो समझ जाएं कि आप शेरनी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही वाली कहानी होती थी। यार आज की डेट में ना हम सब जो हैं काफ़ी एम्बिशियस हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में मेल फीमेल दोनों वर्किंग होते हैं, और इन सब बातों के बीच कहीं ना कहीं अगर कोई सफ़र करते हैं तो वो हैं बच्चे। देखो मैं मानती हूँ कि आज की डेट में ना बच्चों के साथ वक्त बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि बच्चे खुद अपने आप में ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि जो वक्त आपको अपने बच्चों के साथ मिलता है जब भी वो घर पे होते हैं ना, इंश्योर करें कि वो वक्त पूरी तरह से उनका हो। यार उस वक्त भी अगर हम कहीं ना कहीं अपने सेलफोन में बिजी हैं, अपने दिमाग में, अपने पचड़ों में, अपने मसलों में बिजी हैं, तो इतना समझ जाएं कि बच्चे बड़े होते होते मिसाइल की तरह कब ऊपर आगे निकल जाएंगे हमें ये पता नहीं चलेगा, एंड बाद में बस ये बातें याद रह जाएंगी कि काश यार थोड़ा और वक्त मिल पाता। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए ना, है ना, ये तो हम अक्सर कहते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, उनकी इस बढ़ती हुई उम्र के साथ जहाँ आपका भी वक्त गुजर रहा है, हर एक पल उनके साथ जब जिए ना, तो दिल खोल के मस्ती में मज़े से जिए, पूरी तरह से उनका होकर जिए। करके देखें, मज़ा आता है, दिल को जो सुकून मिलता है ना, क्या ही कहना। अरिजीत सिंह की आवाज़, शाश्वत सिंह का साथ, एक अगला प्यारा सा गाना, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: The show was absolutely amazing.
3: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक दिस फ्रॉम द फिल्म जब तक है जान। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जब तक है जान एक काम जो है करना जरूर करना है। मिर्ची अंशु हाई, जिंदगी जो है ना जिंदा होने का मौका हर दिन हर सुबह देती है, इंसान मरता सिर्फ और सिर्फ एक बार है। तो जब हर दिन नई जिंदगी मिलती है तो क्यों ना यार, कुछ भी खास काम करना हो, जिंदगी को सही तरह से जीना हो, उसके लिए एक खास दिन का मौके का इंतजार क्यों करना। हर दिन एक नया मौका तो है ही अपने पास। तो इतना ही कहना चाहूंगी, लाइफ में जब तक जान है भाई तब तक हर दिन को मस्ती में मजे में खुश होकर अच्छी तरह से जीना है। जितना एंटरटेनमेंट का जरिया हो सकता है उसे अपनी लाइफ में शामिल करते ही रहना है। खाना पीना अच्छा करना है, खुद खुश रहना है, औरों को खुश रखना है। साथ ही खुश रहने की बात करूं, एंटरटेनमेंट की बात करूं, तो एक ऐसे इवेंट के बारे में हम ना सोचे तो क्या ही करें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाला इवेंट कतर, स्केड्यूल टू टेक प्लेस ऑन 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। जितना सातवीं कक्षा में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक आंसर को नहीं रटवाया होगा, उससे ज्यादा मैंने तुम्हें सुहानी की डेट एंड इवेंट की डिटेल्स रटा चुकी हूं। तो जाओ, परीक्षा की घड़ी आ गई, यानी कि टिकट खरीदने की बारी आ चुकी है। क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट है सुनो सिटी, तीनों प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं, जाकर अपनी टिकट सिक्योर करें। आफ्टरवर्ड्स चारों खाने तुम्हारे दिमाग के चित्त करेगी छोरी। तैयार रही हो के की आवाज़ यानी अगला गाना। जाने से पहले मा सलामा हबीबी 89.6 मर्शी वॉट, इट्स हॉट।

0: भाई प्लीज कोई नेहा कक्कड़ को उनके डिलूलू से निकालो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, जिस हिसाब के स्टेटमेंट्स उन्होंने सुनिधि चौहान के लिए दिए हैं उसके हिसाब से तो मेरे दिमाग में बस यही थॉट आ रहा है कि ये दीदी जो है बहुत मेजर लेवल के डिलूलू में जी रही है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुनिधि चौहान ने एक पॉडकास्ट में बोला कि भाई आजकल के म्यूजिक रियलिटी शोज जो है वो फेक कंटेस्टेंट्स को यूज करते हैं एंड दे रिलाई हेविली ऑन ड्रामा एंड आर मैनिपुलेटेड बाय मेकर्स, इसीलिए उन्होंने इन म्यूजिक रियलिटी शोज से डिस्टेंस कर लिया। जिसके ऊपर नेहा कक्कड़ का स्टेटमेंट आया कि ओह, सुनिधि चौहान के हाथ अंगूर नहीं आए इसीलिए उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। अच्छा जी, नेहा दीदी हमारी इंडस्ट्री में फिलहाल सबसे ज्यादा इरेलेवेंट अगर कोई चल रहा है तो वो आप हैं, और ऊपर से आप द क्वीन सुनिधि चौहान के बारे में ऐसी बातें अगर बोलेंगी तो भैया बीच समाज में आपको बेइज्जती तो जरूर झेलनी पड़ेगी। वो क्या है कि ना तो हमारे सुनिधि को लॉलीपॉप वन लॉलीपॉप टाइप के गाने निकाल के हाइप क्रिएट करने की जरूरत होती है और ना ही किसी म्यूजिक रियलिटी शो पे आंसू बहा के फुटेज खाने की जरूरत, क्योंकि हमारी क्वीन का क्राफ्ट स्पीक्स वॉल्यूम। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची में, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म यार। नाम है इसका द विवान। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं इसमें, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 25th ऑफ सितंबर। बाकी फिल्म से ना एक रोमांटिक ट्रैक समझो ना ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था, और अब इसका एक डिवोशनल और फोकलोर एलिमेंट को फोकस करने वाला गाना आया है जो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है बींग अ बिहारी, क्योंकि ये गाना छठी मैया के लिए है, जिसको लिखा है कौशल किशोर ने, विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। एंड द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज दैट इसे लिखा है टीवीएफ फेम अर्णव कुमार ने, दीपक मिश्रा इज द डायरेक्टर और एकता कपूर इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर देखा या नहीं भाई? बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार क्यों खींच रहे हैं इस तरीके से कहानी को, बट मी आई लव्ड इट। मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एंड काफी इंटेंस भी लग रही है, विद चेरी ऑन द केक बीइंग जयदीप अहलावत, जो अपने प्रेजेंस से इसको और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बना रहे हैं। अनिल कपूर 19th सितंबर से आने वाले गेम रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं, और इसका नाम है इंडिया के टॉप 1%। सो ये गेम शो ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है ऑफ हिट इंटरनेशनल ब्रिटिश फॉर्मेट द 1% क्लब, जिसमें ट्रेडिशनल ट्रिविया या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं होते। दिस शो फोकसेस ऑन लॉजिक, कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड मेंटल एजिलिटी अंडर प्रेशर रादर देन टेक्स्टबुक फैक्ट्स। वैसे इसकी अनाउंसमेंट के लिए एक कवाली फॉर्मेट में वीडियो डाली है अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड कसम से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी शो को लेकर अपना ओपिनियन तो 19th सितंबर के बाद ही दूंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ, किसी के दिल और जज्बात से नहीं, मैं तो अपनी मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है हरप्रीत कौर जी, तैयार है मैम?
2: हाँ जी बिल्कुल।
0: ओके जी, तीन फ्लाइट अटेंडेंट्स किस फिल्म में स्मगलिंग का हिस्सा बनती हैं?
2: वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, कृति सैनन और करीना कपूर, क्रू।
0: यस इट इज। क्रू में जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट कौन होती हैं?
2: कृति सैनन।
0: रोबोट किस फिल्म में बनी है?
2: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।
0: क्या बात। सो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में रोबोटिक्स इंजीनियर कौन है?
2: शाहिद कपूर।
0: उस्तरा से किस फिल्म में अपने दुश्मनों को मारते हैं?
2: ओ रोमियो
0: में उस्तरा को किससे प्यार हो जाता है?
2: तृप्ति डिमरी।
0: यस इट इज। तृप्ति डिमरी के किस फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम रेखा, जया और सुषमा है?
2: माँ बहन।
0: बहुत बढ़िया। माँ बहन में जया और सुषमा की माँ कौन है?
2: माधुरी दीक्षित।
0: को किस फिल्म में उनकी दीदी का देवर दीवाना होता है?
2: हम आपके हैं कौन
0: में दूल्हे की साली से फ्लर्ट कौन करता है?
2: सलमान खान
0: किस फिल्म में प्यार में पागल हो जाते हैं?
2: वो तो हरी मूवी में होते हैं, रियल में भी हो जाते हैं वो तो।
0: नहीं, मूवी में लेजिट उनको पागल खाने भेजना पड़ता है।
2: अच्छा, तेरे नाम
0: में किससे प्यार होता है उनको?
2: निर्जरा।
0: नहीं, उनका नाम क्या असली?
2: अरे यार
0: आपको बताओ, कैरेक्टर का नाम पता है?
2: हाँ, मुझे निर्जरा पता है, उसका मीनिंग भी मुझे पता है। वो कहती है कि निर्जरा का मतलब पता है, जो कभी मर नहीं सकती, लास्ट में मरी जाती है वो। हाँ, भूमिका चावला
0: की किस फिल्म में पेटीकोट बाबा और कौवा बिरयानी है?
2: ये मुझे नहीं पता।
0: लेकिन आपने क्या मस्त गेम खेला, और आपने जो एक्सटेंडेड वर्जन दिया है ना हर जवाब का, वो बड़ा मजा आया सुन के। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आपको ये टैग दे ही देती हूँ।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: बाकी अगर आगे का गेम आप खेलना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर जरूर डीएम करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ यार, अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए ना आपको कि मैं मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही होती हूँ। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े उनको लगाम लगाइए। सो बेसिकली आज मैंने इस गेम की शुरुआत कर दी थी, बट माई फर्स्ट कंटेस्टेंट गॉट स्टक एट अ पॉइंट। अब उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है अनिमेश गोयल जी। तैयार हैं सर? मैंने इस गेम की शुरुआत की थी हरप्रीत जी से, बट वो अटकी इस सवाल पे। सवाल है, भूमिका चावला की किस फिल्म में पेटीकोट बाबा और कौवा बिरयानी का मेंशन है?
2: रन।
0: रन में भूमिका के साथ कौन घर से रन करता है?
2: अभिषेक बच्चन जी।
0: यस इट इज। अभिषेक बच्चन एक बिजनेस टाइकून किस फिल्म में बने हैं?
2: गुरु।
0: गुरु में मेघा को बरसों कौन बोलता है?
2: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय चोर किस फिल्म में बनी है?
2: धूम टू।
0: यस, धूम टू में शेफ चोर कौन है?
2: ऋतिक रोशन।
0: वाह, सब याद है आपको। ऋतिक रोशन बहती नदी से मछली किस फिल्म से निकाल के दिखाते हैं?
2: क्रिश।
0: क्रिश किसको प्यार की एक कहानी सुनाता है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: क्या बात है सर, आपने तो ये गेम एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया है।
2: ओके, तो क्या मैं फिल्मची बना या नहीं बना?
0: बिल्कुल।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: कंग्रेचुलेशन सर।
2: Thank you.
0: Have a great day. Bye-bye.
2: Love your show. It's a great passion for commute and always keeps me engaged.
0: How
2: so very nice to listen to you while I'm on the road.
0: Thank you so much. It means a lot, sir. Thank you.
2: Thank you. Bye.
0: My heart is full right now. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और ये फिल्मची गेम रोज मेरे शो पे आता है। अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर भेजना मत भूलिएगा। Till then, stay tuned. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, bold
1: only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold
1: only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: रिश्ते में तो ये हमारी मां लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब बाबू मोश आए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें एंग्री यंग मैन तो मिला है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एंग्री यंग वुमेन की, क्योंकि भाई औरतों को भी गुस्सा आता है और उनके गुस्से और उनके इस आइडेंटिटी को लेकर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं हमारी इंडस्ट्री में। एक्टर्स लाइक स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और दीप्ति नवल ने ऑलरेडी इस फोर्टे को एक्सप्लोर किया है बैक इन द 70s। बट आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं आज की डेट के कुछ एंग्री यंग वुमेन की बात करने वाली हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लेट्स डिस्कस शिफाली शाह मैम। भाई इनका कैरेक्टर दिल धड़कने दो में हो, जो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के रिप्रेस करके रखती है, या फिर उनका कैरेक्टर डार्लिंग में हो, जो जनरेशनल रेज को अपने अंदर दबा के रखती है बट अल्टीमेटली उसको इस लिमिट्स तक पहुंचाया जाता है कि उसका गुस्सा निकल ही जाता है। सो ऑल इन ऑल शिफाली शाह एज एन एंग्री यंग वुमन एम्बॉडीज फ्यूरी, जो अक्सर छुपा होता है जब तक उसको निकलने पे मजबूर ना किया जाए। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अभी और चार ऐसे ही एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Jambana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके,
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल,
3: पता नहीं कौन बोल रहा
2: है, पता नहीं कौन बोल रहा है।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जैन साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ
3: भैया। नंबर चेक,
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा,
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू
4: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live in

0: हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को गुस्सा आना मतलब कुछ अटपटा हो जाना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इनफैक्ट बाबू मोशाय हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है। मतलब अगर मेल लीड्स की बात करें, उनको अगर गुस्से वाला कैरेक्टर मिलता है तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर औरतों की बात करें तो उनके गुस्से को ना एक अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई उनका ये जो गुस्सा है वो मेजर्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और एक लार्जर कॉज के लिए हो तो समझ में भी आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कैसे हो सकती है कोई महिला? बट कुछ फिल्में हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं।

वो एक फोर्स में तब्दील ना हो जाए, या फॉर दैट मैटर उनका कैरेक्टर हैदर या अंधाधुन में हो, जो एक डीपली कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिग्यूस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है जिसके साथ ऑडियंस भी एम्पथाइज करने में 10 बार सोचे। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट विद्या बालन एज एन एक्टर और उनके कैरेक्टर्स। अब वो फिल्म कहानी की बात हो जहां उन्होंने प्रेगनेंसी के स्टीरियोटाइप्स को वेपनाइज किया है, वल्नरेबिलिटी को डिस्गाइज किया है, या फिर शकुंतला देवी का उनका किरदार हो जो अपने जीनियस और अपने एम्बिशंस को यूं ही साइडलाइन नहीं करती। तो बाबू मोशाए, मेरी इस लिस्ट में और तो ऐसी ही महिलाओं की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अगर समाज के हिसाब से रीजन सही ना हो तो औरतों का गुस्सा जायज नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशाय, इस चीज को तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन प्रूव किया ही है, क्योंकि बहुत सारे मेल एक्टर्स ऐसे गुस्से वाले हमें मिले हैं जिनको लोगों ने वेलकम किया है, उनको अप्रिशिएट किया, उनके टैलेंट को भी सराहा है। लेकिन अगर एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो थोड़ा मामला डगमगा जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं ऐसी ही महिलाओं को सेलिब्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम, नंबर दो पे हमने तब्बू को डिस्कस किया, नंबर तीन पे विद्या बालन, अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट। अब डार्लिंग्स मूवी में उनका किरदार हो जो पहले विक्टिम होती है और फिर इतना ज्यादा गुस्सा उसके अंदर होता है दैट शी टर्न्स द टेबल और अपना बदला लेती है, या फिर उनका जिगरा वाला कैरेक्टर हो जो जस्टिस के लिए अपने फिजिकल लिमिटेशंस को भी साइडलाइन करके आगे बढ़ती है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्वरा भास्कर एज एन एक्टर। अब नील बट्टे सन्नाटा में इनका किरदार हो जो अपनी किस्मत से रेजिस्ट करते हुए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बदलने का सोचती है, या फिर उनका किरदार लिसन माया में हो जो डिसाइसिवली एक्ट करती है, इनफैक्ट अपने बॉस को थप्पड़ भी मारती है टू प्रोटेक्ट हर बाउंड्रीज। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कुछ एंग्री यंग वुमेन आप भी डिस्कस करना चाहो, एड इन करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

बन गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां का उसके कदमों में

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म यार। नाम है इसका द विवान। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं इसमें, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 25th of September। बाकी फिल्म से ना एक रोमांटिक ट्रैक समझो ना ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था, और अब इसका एक डिवोशनल और फोकलोर एलिमेंट को फोकस करने वाला गाना आया है जो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है बींग अ बिहारी, क्योंकि ये गाना छठी मैया के लिए है, जिसको लिखा है कौशल किशोर ने, विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। एंड द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज दैट इसे लिखा है टीवीएफ फेम अरुणाभ कुमार ने, दीपक मिश्रा इज द डायरेक्टर और एकता कपूर इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर देखा या नहीं भाई? बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार क्यों खींच रहे हैं इस तरीके से कहानी को, बट मी आई लव्ड इट। मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एंड काफी इंटेंस भी लग रही है, विद चेरी ऑन द केक बीइंग जयदीप अहलावत, जो अपने प्रेजेंस से इसको और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बना रहे हैं। अनिल कपूर 19th September से आने वाले गेम रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं, और इसका नाम है इंडिया के टॉप 1%। सो ये गेम शो ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है ऑफ हिट इंटरनेशनल ब्रिटिश फॉर्मेट द 1% क्लब, जिसमें ट्रेडिशनल ट्रिविया या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं होते। दिस शो फोकसेस ऑन लॉजिक, कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड मेंटल एजिलिटी अंडर प्रेशर रादर देन टेक्स्टबुक फैक्ट्स। वैसे इसकी अनाउंसमेंट के लिए एक कवाली फॉर्मेट में वीडियो डाली है अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड कसम से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी शो को लेकर अपना ओपिनियन तो 19th September के बाद ही दूंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

काजोल के डर की वजह से पोलैंड की वादियों को बनाया गया जम्मू कश्मीर। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म फना, जिसमें आमिर खान और काजोल लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, डायरेक्टेड बाय कुणाल कोहली, एंड यस, इस हिसाब से इस फिल्म ने 20 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं। सो या अबाउट द वैलीज, जो आप इस फिल्म में देखते हैं वो जम्मू कश्मीर नहीं बट एक्चुअल में पोलैंड की वादियां हैं। सो एक्चुअल में जब काजोल को पता चला कि इस फिल्म के मेजॉरिटी पोर्शन की शूटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है, देन शी फियर्ड टेररिस्ट अटैक्स, एंड दैट इज वाई इस पूरे के पूरे शूट को शिफ्ट किया गया इन पोलैंड। इनफैक्ट इस मूवी के एल्बम पे जो म्यूजिशियन डुओ ने काम किया है, दैट इज जतिन ललित ने, ये उनकी लास्ट मूवी थी एज अ डुओ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सेपरेटली काम करना शुरू किया था। एंड अगर आपको इनके काम के बारे में उतना कुछ याद नहीं है तो मोहब्बतें, DDLJ, K3G, ये सारी फिल्मों के एल्बम्स इन्होंने ही तो क्रिएट किए हैं। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानी आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती हैं, जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
0: स्पीकिंग।
1: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें यह है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
0: जी।
1: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
0: बोल, कौन रहा है?
1: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
0: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
1: बिल्कुल
0: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
1: सही बात है,
0: गर्ल्स को नहीं देंगे।
1: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
0: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
1: एक सेकंड मैम रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं
0: हाँ वही बात कर रहा
1: हूँ, वो मेरी वाइफ है यही। हाँ बोलिए।
0: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
1: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
0: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। हाँ? नकली तरह से आप मेरे से
1: नहीं,
0: बातें
1: नहीं,
0: कर
1: नकली तरीके से क्या?
0: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
1: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
0: वो तो कोई बपौती है क्या?
1: नहीं नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीख ले। नहीं तमीज,
0: नहीं नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है
1: मेरी बात। सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
0: Oh my.
1: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: This show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: भाई पीटू उषा और यूसेन बोल्ट भी इनके सामने शर्मा जाएंगे।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। तो आज मैं कैटेगरीज डिसाइड कर रही हूँ इंसान के चलने की हरकत के हिसाब से, आई मीन चलने के पेस के हिसाब से, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो बड़े ही नॉर्मल से हैं, नॉर्मल चाल होती है इनकी, ना ज्यादा तेज चलते हैं ना ज्यादा धीरे चलते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, ओ हो, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, क्योंकि इनको पैर नहीं मिले हैं, टांगे नहीं मिली हैं, बट सुपरसोनिक जेट के पहिए लगे हुए हैं यार। क्योंकि भाई ये इंसान अगर ग्रुप में चलना शुरू करता है तो अकेला ही आगे बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप तो पीछे रह गया, जिसके लिए इसको रुक रुक के बीच में इंतजार करना पड़ता है। तो आपसे बस हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहती हूं कि भाई या तो अपना पेस थोड़ा कम करने की कोशिश कर लीजिए ताकि आपको भी ब्रेक ना लेना पड़े बीच बीच में, या फिर अल्टीमेट आइडिया यह है कि आप करियर स्विच करने की सोचिए। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप इस स्पीड पे चल रहे हैं तो सोचिए भागेंगे किस स्पीड पे। कसम से बता रही हूं, पीटी उषा और यूसेन बोल्ट भी आपकी परफॉर्मेंस पे शर्मा जाएंगे। बस इंटेंट लेकर आ जाइए। वैसे इन दूसरी कैटेगरी वालों के बारे में इतने अच्छे से इसलिए बताया है क्योंकि आई बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस रोल के लिए इनके ऊपर तो काफी पीयर प्रेशर होगा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ, ये बात और है कि इस इंसान और प्रेशर का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होता। बात हो रही है अक्षय कुमार की बाबू मोशाए, जिनको अपने लेट ससुर जी बोले तो फादर इन लॉ का रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राजेश खन्ना, यानी कि ट्विंकल खन्ना के पिता श्री एंड डिंपल कपाड़िया के हस्बैंड जी। सो द बैक स्टोरी इज कि फरहान अख्तर अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर लेकर आ रहे हैं एक बायोपिक ऑन आरडी बर्मन साहब। हां जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने वाले म्यूजिशियन आरडी बर्मन। डायरेक्शन की जिम्मेदारी है नीरज पांडे के ऊपर और इस बायोपिक में फरहान अख्तर आरडी बर्मन साहब का किरदार निभाते नजर आएंगे। बट द रीसेंट अपडेट इज दैट एक एक्सटेंडेड कैमियो के लिए अक्षय कुमार को राजेश खन्ना का किरदार प्ले करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने हाँ भी कर दी है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने स्केड्यूल से 10 दिन भी निकाल लिए हैं। बाकी द मूवी इज सेट टू गो ऑन द फ्लोर्स बाय अक्टूबर दिस ईयर, जिसके बारे में आगे की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हर हिंदी सिनेमा मसालेदार नहीं होती।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। और बाबू मोशाई, ये तो एक फिक्स्ड परसेप्शन है कि जब भी हम देसी फिल्मों की बात सोचते हैं या करते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में एकदम से आती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारा ह्यूमर है, इंटेंस इमोशंस हैं, एंड इन शॉर्ट आर मूवीज आर नथिंग बट मसालेदार। लेकिन हाँ, इन द रीसेंट टाइम्स बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं दैट हैव टच्ड अपॉन सेवरल सीरियस टॉपिक्स अराउंड सोशल इश्यूज, मतलब बहुत सारे स्टिग्मास जो हमारी सोसाइटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके बने हुए हैं उनको उठाकर फिल्में बनी। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश विंग्लिश। भाई, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज टर्न्ड आउट बाय आवर फिल्म इंडस्ट्री इन द लास्ट डेकेड। इनफैक्ट ये फिल्म एक स्पॉटलाइट डालती है देसी हाउसवाइफ्स के ऊपर, अ सेक्शन जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी फिल्म के साथ श्रीदेवी मैम लेकर आई एक न्यू वेव ऑफ चेंज इन आवर सोसाइटी विद द फिल्म्स फ्लॉलेस प्लॉट लाइन एंड हार्ट वार्मिंग कैरेक्टर्स। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और भी कुछ फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
1: मेरी ऑफिस में बहुत बकवास चाय मिलती है, क्या करूं?
0: अगर ऐसा है तो टपरी पे काम करना स्टार्ट कर, उधर तेरे को चाय मस्त मिलेगी।
2: खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़।

0: हम लोग जब हम लोग बीच पे जाएंगे इतने टाइम्स के बाद। 89.6 मिर्ची वन पर आ गया आपके साथ आपका दोस्त यार मस्त मौला गौरव। और मिर्ची घड़ी का टाइम पहले बताएं फिर आगे की बात बढ़ाएंगे। 4:04 से ज्यादा
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, तो हम आपसे ये कह रहे थे कि हम अब जब बीच पर जाएंगे तो यही कहेंगे तेरा मेरा रिश्ता पुराना, क्योंकि पिछले कई महीनों से हमने बीच का किनारा देखा ही नहीं है भाई। जिस तरह का मौसम हो रहा था हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट कल भी वीकेंड पे भले ही हम लोग डिस्कशन यही कर रहे थे कि नहीं यार बीच गए बड़ा दिन हो गया एक दिन चलते हैं, तो कहीं ना कहीं यही बात आई कि मौसम थोड़ा सा और राहत भरा हो जाए। हालांकि सूरज चाचू कोई कोताही नहीं बरत रहे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे दोस्तों धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू होगा और जैसे ही बदलेगा हम सब झपट्टे मार के एक साथ बीच पहुंच जाए, वो भी ना हो कतर में बहुत सारे अलग अलग इलाके, वहां जाइएगा एक ही जगह भीड़ इकट्ठी मत कीजिएगा। इन सब के बीच आज थोड़ी राहत की बात है कि टेम्परेचर उतना नहीं है, हालांकि ह्यूमिडिटी जरूर सता रही है, पर घबराना नहीं है, धीरे धीरे मौसम बेहतर की तरफ बढ़ रहा है इस बात को समझ लेना है। एंड देख लीजिएगा 15 सितंबर के बाद अचानक से एकदम माहौल अच्छा बन जाएगा, हम और आप और आनंद लेंगे। लेकिन फिलहाल आज इंपॉर्टेंट बात करेंगे उनके लिए जो कह सकते हैं ईयर नोज एंड टंग को लेकर परेशान रहते हैं। हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट आने वाले हैं आपसे थोड़ी देर में, तो कान लगाए रहो भैया, मिर्ची सुनते रहो, आगे बढ़ाते हैं इस घंटे को। शाम शानदार की शुरुआत, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा
3: क्या
4: बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
5: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
8: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
9: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Shaam, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah

0: नाचो हो हो हो, गाने की एनर्जी अलग है भाई। मधुबन दीपाक्षी की आवाज में गाना सुना दिया और आपके साथ आ गया मस्त मौला गौरव। तो ये बताना जरूरी बनता है कि स्कूल के वैक्सीनेशन कैंपेन में अब एक और वैक्सीन जुड़ी है।
1: #974
0: मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एक साथ लेकर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन को एक साथ लेकर इंक्लूड कर रहे हैं एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन कहते हैं इसे, इन नेशनल स्कूल वैक्सीनेशन कैंपेन। इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि प्रिवेंशन हो जो कि हाई रिस्क टाइप ऑफ वायरस होते हैं उससे, एंड बच्चों की हेल्थ को जो है फ्यूचर में भी वो मजबूत रहें, उनके ऊपर जो बर्डन आएगा उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन डिजीजेस से, इन कैंसर ट्यूमर से बचाने के लिए ये वैक्सीन को अब स्कूल प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है। एंड इसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बिल्कुल मनाकर इतने कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ने इसके लिए बकायदा आज एक कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कैसे 301 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स में टारगेट किया जाएगा ग्रेड 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स को, एंड ऑलमोस्ट 75,000 फीमेल एंड मेल स्टूडेंट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड इसका फर्स्ट फेड विल स्टार्ट ऑन September 20th। ऑल द बेस्ट। वेल, May 16, 2027 तक ये ऑलमोस्ट सेकेंड फेज भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जरूर इसके बारे में बताइएगा एंड उन्हें बताइएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है उनके फ्यूचर के लिए, उनके हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। और जब भी बात सुई की आती है दोस्तों, मुझे याद आता है कि आखिरी बार जब सुई लगवाई टेटनेस की मुझे अच्छे से याद है, तो आज भी उई उई उई निकल जाता है, चूहा बोले उई उई उई वाली फीलिंग आती है। फिलहाल कभी कभी कुछ चीज़ें दर्द जरूर छोटा सा देती हैं, लेकिन उनका फायदा ऐसा होता है जो बाद में फायदा ही फायदा देता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक मुंह से फिसली हुई, उसको वापस लेना चाहूंगा। ईयर नोज एंड थ्रोट बोले तो ENT स्पेशलिस्ट आज मेरे साथ है डॉक्टर भवेश मोदी। अब से थोड़ी देर में बहुत सारे आपके सवालों का जवाब लेना है, तो यहाँ कान लगा के बैठे रहो। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको ईयर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैक्स भरा हुआ है, कान में दर्द, सब कुछ यही पता लगेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुनीत मेरे भाई, अब ठीक है? मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाँ जी, बिल्लो का लाल घगरा, ये तो गाना खत्म हो गया, लेकिन भाई आपके साथ आपका यार आ गया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में एक सपना जरूर है कि मेरे गले में वो 50 तोला, माँ 50 तोला वाली एक सिकड़ी आए। इसीलिए मैं कहता हूँ, पैसे जब बचाओ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। फिलहाल टाइम फॉर
2: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें इस वक्त अल फरदान एक्सचेंज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 584 कतारी रियाल का। यस, वन आपका यार आ गया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में एक सपना जरूर है कि मेरे गले में वो 50 तोला, माँ 50 तोला वाली एक सिकड़ी आए। इसीलिए मैं कहता हूँ, पैसे जब बचाओ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। फिलहाल टाइम फॉर
2: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें इस वक्त अल फरदान एक्सचेंज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 584 कतारी रियाल का। यस, वन
2: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें इस वक्त अल फरदान एक्सचेंज पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 584 कतारी रियाल का। यस, वन
3: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राटी।
7: दिस स्कूल सीजन फ्योर एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेज़राटी फ्रेश प्रोडक्ट्स।
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवने।
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: जब मिस्टी फॉगी कंडीशन होती है तो भी आप माइकल शुमाकर होते हैं। तो ये एक बेवकूफियों में शुमार होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है जब भी वेदर का सिचुएशन बदले, आपको मिस्टी फॉगी वेदर दिखाई दे, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी आराम से ही रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराया है कि ऐसे मौसम अब हो सकता है जल्दी जल्दी आए, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा गाड़ी आराम नाल चलाइएगा, सेफ्टी मेजर्स लीजिएगा और एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिएगा जब आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि वेदर गुरु बदलेगा जरूर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी शायद आप ज्यादा गर्म फील कर रहे हो। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 39 था एंड मिनिमम विल बी अराउंड 31, लेकिन ह्यूमिडिटी का पारा 52%, इसकी वजह से आपको बहुत गर्म लग रहा होगा, पर रियल फील आज 48 का इसी वजह से है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। टेम्परेचर मैक्सिमम 39 डिग्री था आज का एंड मिनिमम 30, एंड बड़ी बात यह हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर के आसपास चल रही है, पर उसका कोई यूज नहीं है। जब ह्यूमिडिटी होती है गुरु तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो, बस पानी पीना कर दिया करो शुरू। 89.6 मिर्ची वन पर ये था वेदर अपडेट मिर्ची थॉट। वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम शान जी, मुसु मुसुहा।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने।
7: चा,

0: Francisco.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: बालकनी का दरवाजा खुला रखता हूँ तो कबूतर अंदर आ जाते हैं और पूरा रूम गंदा कर देते हैं, क्या करूँ?
2: अरे तो कबूतरों को बोलो कि चप्पल बाहर निकाल कर आए।

0: तबाही तबाही गाने में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में कभी किसी की ना हो मेरे भाई। हाँ जी, क्योंकि मेरा ये मानना है दुनिया में सब कुछ अच्छे से चले भैया, ये नाम आए ना किसी को ये बोलना ही ना पड़ेगा भैया उनकी तबाही होगी। फिलहाल तो 5:04 से ज्यादा
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार बचपन के दिन ही अच्छे थे, हम 10 पैसे भी लेके ना कुछ खरीद सकते थे और जब मेले में जाने की बात होती थी तो 10 रुपए मिल जाए तो राजा फील करते थे। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले ये 10 रुपए तो ऐसे लगते हैं मानो सपने में भी किसी को कभी ना देने पड़े। फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा, पैसे बचाए हो तो भेजो, रेट्स अलग हैं। एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.19 26.19 रुपए। एक कतरे रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 90.15 लंकन रुपीज, वहीं वाहिद कतरे रियाल के बदले पाकिस्तान रुपीज की बात करेंगे जनाब 76.06 पाकिस्तान रुपीस। तपाई को नेपाली रुपीस का रेट चाहिए आज एक कतरे रियाल के बदले 41.87 का बल्चर रेट रहा है। हाँ जी 41.87 को नेपाली रुपीस का रेट चाहिए अगर आप चाहें तो घर भेज लें। एंड इसके बाद बांधो बांग्लादेशी टाका बात करेगा एक्टा कतरे रियाल के बदले 33.82 तो 33.82 आइटर रेट चाहते तो मस्त मोलो घर में बता दिया अभी घर भेजना है तो बेस्ट टाइम छो मिर्ची इट्स हॉट
2: लाया आई पे बेस्ट एक्शंस रीड्स भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे।
0: वैसे हम सब प्रदेश में रहते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि यार तबीयत खराब हो जाए तो क्या करना है। ऐसे में हम अगर बात करें तो ENT स्पेशलिस्ट यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट के एक ऐसे डॉक्टर जो वतन से दूर ही सही पर हमें कतर में भी अच्छे से देखते हैं और हमें हमारे ENT से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। आज उनको मिर्ची पर इनवाइट किया है किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से डॉक्टर भावेश मोदी। आपसे थोड़ी देर में मिर्ची पर जुड़ रहे हैं मिर्ची।

0: Mehmet Mirçi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vid bala burga.
1: Mirçi, burga. Burga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड मिलता है,
2: आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo-Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्तपाल और गौरव, और आज मिर्ची स्टूडियोज में एक खास मेहमान लेकर आया हूँ। वैसे तो इनकी जरूरत लोगों को जितनी कम पड़े उतनी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकते, तो कभी कभी हमारे ईयर में, कभी नोज में, कभी थ्रोट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और आज हमारे साथ है ENT स्पेशलिस्ट मिस्टर भावेश मोदी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिर्ची में सर।
1: थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम।
0: एंड भावेश सर, आप इंडिया में कहाँ से पढ़ाई की आपने, किस शहर से हैं और कतर कैसे आना हुआ?
1: ठीक है, मेरा पढ़ाई सब, अपब्रिंगिंग सब कुछ अहमदाबाद में हुआ। बिल्कुल, तो फ्रॉम ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स अहमदाबाद में ही पढ़ाई हुई, स्कूलिंग सब। उसके बाद मेडिकल एडमिशन हुआ, वो भी अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से।
0: बीजे
1: मेडिकल कॉलेज
0: जी।
1: इसकी जो हॉस्पिटल है।
0: आप इंडिया में कहाँ से पढ़ाई की आपने, किस शहर से हैं और कतर कैसे आना हुआ?
1: ठीक है, मेरा पढ़ाई सब, अपब्रिंगिंग सब कुछ अहमदाबाद में हुआ। बिल्कुल, तो फ्रॉम ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स अहमदाबाद में ही पढ़ाई हुई, स्कूलिंग सब। उसके बाद मेडिकल एडमिशन हुआ, वो भी अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से।
0: बीजे

0: डेस्टिनी यहाँ पे खींच के लेके आया
1: और फिर किम्स हेल्थ में आप जुड़ गए और
0: बिल्कुल
1: आप,
0: बिल्कुल
1: अब मजा आ रहा है सर, आई एम श्योर।
0: अरे बहुत बहुत मजा आ रहा है।
1: तो सर आज ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, तो बातचीत का दौर शुरू करेंगे। और क्योंकि मेरा भी गला बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें भी हमारे ENT स्पेशलिस्ट यही कहते थे बैक होम इन इंडिया कि गौरव बहुत ध्यान रखना, तुम जरा सा चीखते हो तुम्हारा गला जो है तुरंत सफर करता है। तो सर एक छोटी उपाय वाली चीज जो हम नॉर्मल लाइफ नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं जिससे गले को ज्यादा तकलीफ ना हो अगर हम ज्यादा बोले तो।
0: इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन, पानी पीते रहना है। आपने किसी भी स्पीकर को देखा होगा, कोई भी हमेशा एक पानी का बॉटल साथ में पड़ा रहता है। उसको सिर्फ पड़ा नहीं रहने देना है, उसको पीते रहना है बीच बीच में।
1: ओके।
0: तो 5 मिनट हुई 10 मिनट हुई एक दो सिप जरूर पानी पियो, गला आपका बिल्कुल मस्त रहेगा, आपकी आवाज अच्छी रहती रहेगी।
1: चलिए जी, एक RJ को भी टिप मिल गई आज। डॉक्टर भावेश मोदी से बहुत सारी बातें करनी है और थोड़ी और बातें करेंगे 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट। तेरा मुख

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: 89.6 पर मस्पोरा गौरव आपके साथ एंड किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर भावेश मोदी, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे तो आपके सवालों को हम ही पूछ देते। अब देखिए डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कतर में ना हम ठंडा गर्म बहुत करते हैं, एसी से जा रहे हैं अंदर फिर बाहर निकल के आ जा रहे हैं फिर गर्मी में, फिर इस चक्कर में साइनस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक होने लगता है, ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है
0: जी,
1: क्योंकि ये आई बिलीव कि ये सबको इफेक्ट करता है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें इश्यू क्या है मैं आपको एक जरा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। एक तो सडन टेम्परेचर चेंजेस होता है तो जिसको हमको टाइम देना चाहिए, और दूसरा फैक्टर आता है एसी का, है ना, तो एसी की वजह से ड्राई एयर आती है, दैट इज गिविंग द ट्रबल। तो हमको करना क्या है कि एक तो एसी का टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं करना है, आपका एसी का टेम्परेचर 24-25 के अराउंड रखे, एसी का फिल्टर हमेशा रेगुलरली क्लीन करें 15 दिन में 1 महीने में, एंड आई एम श्योर 90% लोग ये नहीं कर पाते होंगे।
0: बहुत सही,
1: है ना,
0: और छोटी चीजें हैं,
1: हाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, एंड अगेन खूब सारा पानी पीते रहना है, ये आपको थोड़ा सा टाइम देना है जब आप ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे में आ रहे हो, डू इट इन अ स्टेप वाइज मैनर, क्योंकि अपने बॉडी को एडजस्ट होने में एकस्टम होने में जरा सा टाइम देना है।
0: तो यानी कि कार में भी हम हैं, गाड़ी को पहले स्विच
1: ऑफ करो, एक 10-15 सेकेंड आधी मिनट अगर रुक सकते हो रुक जाओ, फिर आप बाहर निकलो, फिर थोड़ा सा शेड में रहो, फिर आप अंदर एंटर हो और फिर आप अपने एसी रूम में चले जाइए।
0: तो भाई कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो इस तरह की सारी मुसीबतों से हम बच पाएंगे, और इसी मुसीबत से बचाने के लिए तो आज आए हुए हमारे साथ डॉक्टर भावेश मोदी, यस किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आज मैं ले लूंगा ताकि आपको होने वाली दिक्कतें कम हो सके, और बाकी के लिए डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है?
1: आप कभी भी किम्स हेल्थ में आइए एंड यू कैन टेक अपॉइंटमेंट and available both the time morning evening।
0: अरे वाह, तो बस किम्स हेल्थ आना है और बोल देना है डॉक्टर भावेश से हमें मुलाकात करनी है, कंसल्ट करना है।
1: बिल्कुल,
0: चलिए जी थोड़ी और बातें करेंगे 89.6 मिर्ची 1 पर, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्पौर और गौरव किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर भावेश मोदी एंड बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे डॉक्टर साहब, अब आपको पता ही है कि लोग आज के दौर में ना ईयरबड्स अपने कान का ही एक अलग हिस्सा मानते हैं। दिन भर मोबाइल का फिर हैंड फ्री लगाकर घूमेंगे और इसकी वजह से आने वाले टाइम में लगता है आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है या ऐसा कोई प्रॉब्लम?
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गौरव तुमने। ईयरबड्स, यस, इट इज अ बिग चैलेंज एंड इट कैन डेफिनेटली गिव अ ट्रबल। व्हाई? क्योंकि ये जो आप ईयरबड्स लगाते हो ना, वो सिर्फ बाहर नहीं है
0: जी।
1: तो वो सीधा जाता है अंदर। तो मतलब आपके कान में कोई बोल रहा है, आपके कान में कोई गाना गा रहा है, वो फील आपको आएगी। वो मज़ा तो बहुत देता है बट इट इज़ वेरी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपके पर्दे के पास है।
0: तो ऐसे में सेफ्टी जो हमें ज़रूर प्रिकॉशनरी मेजर पे लेनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए?
1: करेक्ट, इसका एक सबसे बेसिक, इसको बोलते हैं 60-60-60 फॉर्मूला।
0: ओके,
1: है ना। उसमें क्या है कि आप आपका जो वॉल्यूम है उसको 60% से ज़्यादा ना ऊपर रखें।
0: ओके,
1: दूसरा है 60 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं सुनना है।
0: परफेक्ट।
1: और तीसरा 60 जो है वो 60 मिनट्स का ब्रेक ले लो।
0: चलिए जी, 60 पे वॉल्यूम रखते हैं, यानी कि वॉल्यूम का जो लेवल है वो 60% होना चाहिए। 60 मिनट से ज्यादा आपके कान में ये नहीं होना चाहिए और 60 मिनट्स का ब्रेक जरूरी है, यानी कि 1 घंटा कान में लगा दो फिर 1 घंटा उतार दो भैया,
1: बिल्कुल
0: सब ठीक रहेगा। ऐसी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं लेकिन शायद इनको अगर हम अपनी लाइफ में यूज करें तो बहुत सारे फ्यूचर की मुश्किलों से बच सकते हैं, और वही आज बता रहे डॉक्टर भावेश मोदी यहां 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट जब

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ, प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर रस्ताना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्तपाल और गौरव, और क्योंकि डॉक्टर भावेश मोदी आज यहाँ मिर्ची में मेरे साथ बैठे हुए, एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने अपने घर के बच्चों में ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है आपसे पूछना चाहिए कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों को देख रहे हैं सर, स्नोरिंग बहुत बड़ी चीज है, खांसते हैं ठीक है, छींकते हैं, उनको नोज रनिंग है, समझ में आता है एसी से बाहर गर्म, पर ये स्नोरिंग प्रॉब्लम एट अ वेरी यंग एज, इज इट अ प्रॉब्लम या ये एक हैबिट की वजह से होती है?
1: देखो, स्नोरिंग में ऐसा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है और उसके साथ स्नोरिंग है तो वो चलेगा कि भाई चलो 4-5 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो तो ठीक है, चलो क्योंकि आपका नाक बंद है तो स्नोरिंग होगा है ना, पर अगर ये स्नोरिंग आपका कंटिन्यूस रहता है तो देन यस इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस केस में अपने को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: जी जी जी।
1: तो सबसे दो चीज़ें, तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। एक है कि अगर स्नोरिंग कंटिन्यूस रहता है, दूसरा जब बच्चा सोता है और आप देखते हो कि उसका सांस रुक गया, जिसको मेडिकल में एपनिया बोलते हैं, मतलब वो सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जाता है।
0: अच्छा,
1: अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो जल्दी दिखाना चाहिए डॉक्टर को तुरंत ही। और तीसरा है माउथ ब्रीदिंग है, अगर कान में उसको पेन है, साइनस इश्यूज कंटिन्यूस रहता है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: ठीक है, अब सर वेदर चेंज होगा, मौसम बदलेगा तो धूल मिट्टी यू नो विंडी होगा, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर से एलर्जी बढ़ेगी, नाक में उनको कई बार ट्रबल होता है, ऐसे में क्या चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है?
1: एक तो बच्चों का खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पानी बराबर पी रहे हो थोड़ा सा देखे, हैंड वॉश प्रॉपर करें, और मास्क पहन सके अच्छा है, अगर बीमार है खुद तो मास्क पहन ले, अगर सामने वाला बीमार है वो नहीं पहन रहा है तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी एक केयर करना चाहिए, पर अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आप ये इन्फेक्शन से बच सकते हो।
0: और एक इम्पोर्टेंट बात आपने बोली इम्यूनिटी के लिए, तो चलिए जी हमारे ENT की इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, इसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर भावेश मोदी हैं, अब से थोड़ी देर में इस पर भी सवाल करेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे
1: बात करनी है?
2: भैया किससे बात?
1: अभी किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके,
1: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
2: पागल
1: पागल
2: कौन बोल रहा?
1: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा है, इको।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया नंबर चेक,
1: नंबर चेक के मिला।
2: हेलो
1: हेलो,
2: भैया क्यों परेशान कर,
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि है।
3: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई,
3: आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC अप्लाई।
6: The show was absolutely amazing.
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: 89.6 पर जीवन पर मस्त पोलो गौरव आपके साथ, किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से हमारे साथ डॉक्टर भावेश मोदी एंड बहुत सारी बातें हो रही है। एंटी स्पेशलिस्ट हैं और मेरे प्रोफेशन से बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है कि कभी थोड़ी ज़्यादा आवाज़ में बात कर दूँ तो आवाज़ से गला दुखता है, और कई बार ऐसा होता है बातें करते करते भी लगता है कि यार गला दुख रहा है, लेकिन हम फिर गर्म पानी पी लेते हैं, लगता है बस सब ठीक हो गया, सेंधा नमक की सेक हो गई, गरारे कर लो। सो उस पर रहना चाहिए या फिर लग रहा है कि अगर ये रेगुलर चीज हो रही है तो एंटीबायोटिक की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए?
1: देखिए, जो गला खराब होता है वो दो तीन चीजों से होता है। एक आपका जो प्रोफेशन है वो तो आपको कंटिन्यूस बोलना पड़ता है तो उसकी वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं ओवर यूज, है ना। तो उसमें तो आप यूज थोड़ा सा मिनिमम करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल।
0: ये मेरे बॉस को भी बता के जाइएगा।
1: और बाकी जो दो है, एक तो है वायरल इन्फेक्शन और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो 90% ऑफ दिस सोर थ्रोट इज द वायरल वन। तो आपको एंटीबायोटिक की हर बार जरूरत नहीं है।
0: एकदम पैनिक करके, अरे डॉक्टर साहब को दिखाओ जल्दी से, मुझे एंटीबायोटिक मिलेगा तो ठीक
1: है। नहीं नहीं नहीं, हर बार एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% तो वायरल इन्फेक्शन होता है और एंटीबायोटिक बार बार लेने से वो अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी भी आपकी खराब करती है। तो डेफिनेटली वो वायरल इन्फेक्शन है। आप तो फिर थोड़ा सा होम रेमेडीज कर सकते हैं, थोड़े से ल्यूकवर्म वाटर पिया, ज्यादा गरारे कर लिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और वेन एवर नीडेड यू कैन टेक सम पेन किलर्स। अगर वो लंबा खींचता है, अगर आपको कफ आना शुरू होता है, कान में पेन होता है, आपका फीवर है, वो अगर जा नहीं रहा है 4-5 दिन से ज़्यादा, तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: एंड ये इस प्रोफेशन की सच्चाई है जो हमें भी समझनी पड़ेगी।
1: डेफिनेटली वो वायरल इन्फेक्शन है। आप तो फिर थोड़ा सा होम रेमेडीज कर सकते हैं, थोड़े से ल्यूकवर्म वाटर पिया, ज़्यादा गरारे कर लिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और वेन एवर नीडेड यू कैन टेक सम पेन किलर्स। अगर वो लंबा खींचता है, अगर आपको कफ आना शुरू होता है, कान में पेन होता है, आपका फीवर है, वो अगर जा नहीं रहा है 4-5 दिन से ज़्यादा, तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

0: 89.6 पर मस्त फॉलो गौरव आपके साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भावेश मोदी फ्रॉम किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर मेरे साथ है। सवाल जरूर पूछूंगे यहाँ पर सर
1: कि
0: रनिंग नोज इज अ प्रॉब्लम इन कतार। अक्सर हम देखते हैं कि सर्द गर्म के चलते भी, और कहीं ना कहीं बच्चों को लोग एकदम रगड़ के साफ करने लगते हैं। हम भी नाक के अंदर बहुत ज्यादा यू नो सफाई रखते हैं, तो उसकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसका हाइजीन कैसे मेंटेन रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का नाक बहना या किसी का भी एडल्ट का भी, वो वेदर चेंजेस की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर से हम जाते हैं तो टाइम बीइंग होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
0: तो स्नीजिंग आ जाती है सर, एकदम 7-8 छींके एक साथ मार देते हैं।
1: हाँ, तो वो उसको हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाते हो, कुछ आपको डस्ट आ रही है, तो यस वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो जिसकी वजह से पानी आता है, छींके आती है, तो दैट इज ओके। पर अगर ये पानी, ये छींके अगर आपको कंटिन्यू रहती है या हर रोज आती है, तो देन दिस कैन बी एलर्जी।
0: ओके,
1: है ना। तो उस केस में आपको एलर्जी से बचना है
0: जी।
1: है ना। बाकी आप नाक को रगड़ेंगे तो वो हार्मफुल इसलिए है कि वो अंदर का जो म्यूकोजा रहता है नाक का, जो अंदर का चमड़ी, जो वो अगर डैमेज होती है तो दैट कैन गिव द ब्लीडिंग एंड अदर इश्यूज। अगर इंजरी होती है तो उससे ड्राइनेस भी होगा, फिर उसका नाक बंद होगा। तो वो बच्चे को जोर ना करे, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सफाई नहीं हुई है बराबर, आप सिर्फ सलाइन का ड्रॉप्स डाल सकते हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना कम छेड़ेंगे वो सबसे अच्छा है।
0: चलिए जी, कान की बात आई तो बोला कम छेड़ो, वहां पे जबरदस्ती ईयरबड्स कॉटन लेके जाने की जरूरत नहीं है। और अब नाक के लिए भी एक आए, ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने एक प्रोसेस बनाया, उसको बस फॉलो करना है, ठीक ठाक रखना है, एकदम क्लीनिनेस और हाइजीन ज्यादा मेंटेन करोगे तो और मुसीबत में पड़ सकते हो। एक आखिरी बार बात करेंगे डॉक्टर भावेश मोदी से मिर्ची पर, और लेंगे उनका एक्स्ट्रा वाला एक सीक्रेट। इट्स हॉट।

0: छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करें, तो एज पर डॉक्टर भावेश मोदी हम अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखेंगे। ऐसे डॉक्टर साहब, ये जो कान से अंदर पानी जाता है सर नहाते टाइम, उसके लिए हम सब ईयरबड्स वो बचपन से रुई लेके आराम से करके ठीक फील करते हैं, लेकिन हमें याद है हमारे बचपन में मम्मी हमारे कान में हल्का सा तेल डालती थी। तो अब दौर बदल रहा है, लोगों को अपने कान को लेकर जो वैक्स होता है वो किस तरह से क्लीन किया जा सकता है, कान की सेहत के बारे में मुझे बताइए।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आई एम वेरी श्योर कि ये 90% पीपल को अफेक्ट करता होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अभी ये एक्स्ट्रा हाइजीन उसकी वजह से है ना, हम लोग ज्यादा ही थोड़ा सा ईयर क्लीन करने लगे।
0: यस,
1: तो कॉटन बर्ड्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो मेडिकली डेफिनेटली इट इज़ नॉट इंडिकेटेड एंड इट इज़ मोर हार्मफुल। क्या हार्म हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। एक कान का जो मैल जो है वो बाहर तो एक 2% 5% आएगा, 95% आप उसको अंदर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा कई बार क्या होता है, आपका ध्यान नहीं है, वो जोर आपने थोड़ा सा अंदर डाल दिया, तो हमने कान के पर्दे फटे हुए देखे हैं बिकॉज ऑफ द कॉटन बर्ड, तो फिर ये आपको हियरिंग प्रॉब्लम परमानेंट भी दे सकता है।
0: सेफ बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल
0: है,
1: नहीं है।
0: Okay.
1: और अब जो आपका सवाल है कि इसको कान को कैसे क्लीन किया जाए
0: जी।
1: तो आप कान के अंदर कुछ मत डालें, आपको जो अगर सफाई करनी है सिर्फ बाहर से टिश्यू या टॉवेल लेके आप बाहर से पोंछ लीजिए, क्योंकि कान की जो सफाई है मैल का जो है इट्स ए नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म, मतलब भगवान ने खुद बनाया हुआ है, अपने को कुछ नहीं करना है। जैसे हम जब बात करते हैं या जब चबाते हैं तो ये जॉ की मूवमेंट होती है
0: जी।
1: और उसी की वजह से ये मैल जो है वैक्स जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि आप वर्ड्स यूज करते हो वो मैकेनिज्म आप डैमेज कर रहे हो।
0: तो उस मैकेनिज्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जो हमारे लिए नेचुरल है ही नहीं, और नेचुरल प्रोसेस में हमारे कान के जो ये मैल है यानी कि जो वैक्स है ये खुद ब खुद क्लीन होते रहते
1: बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाँ, अगर आपका कान बंद हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: एंड हम और आप अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने ईयरबड से ठीक कर लें, हमारे कान को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए ये मुसीबत कितनी बड़ी बन सकती है फ्यूचर में। 89.6 मिर्ची 1 पर एक आखिरी बार बात करेंगे डॉक्टर भावेश मोदी से। मिर्ची थॉट।

0: बातें छोटी जरूर हैं, पर हम अपनी रियल लाइफ में कभी इन पर ध्यान नहीं देते, और आज हमारा ध्यान उस तरफ ले जाकर आकर्षित कराया डॉक्टर भावेश मोदी ने, ईएनटी स्पेशलिस्ट किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर से। बहुत सारी बातें हो गई हैं। एक आखिरी बार सर, कोई भी डॉक्टर आता है, जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट आता है तो हम बोलते हैं कि सर हमारे हार्ट को रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए, सर हमें अपने यू नो डेंटल हाइजीन को कैसे रखना चाहिए, जब कोई डेंटिस्ट आता है। आज ईएनटी स्पेशलिस्ट यहाँ हैं, तो अपने ईयर नोज एंड टंग को, हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए किन बातों का ध्यान देना है वो आप बताइए हमें।
1: बिल्कुल, तो जैसे मैंने पूरी इंटरव्यू में भी बताया, एक तो पानी पीते रहना है ताकि आपका हाइड्रेशन बरकरार रहेगा, तो नाक और गला उसका आपका 70-80-90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा,
0: चकाचक रहेंगे
1: तो। बिल्कुल, और दूसरा मैंने बताया था एसी का, क्योंकि हम लोग कतार में रहते हैं, बगैर एसी के रह नहीं सकते।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें दो चीज, छोटी छोटी चीज है, टेम्परेचर 24-25 रखे और एसी का फिल्टर क्लीन कर ले
0: हर 10-10 दिनों
1: पर। हाँ, हर 15 दिन में, एटलीस्ट हर 15 दिन में आप एसी फिल्टर क्लीन करिए, दैट इज मोर देन इनफ। और कान के लिए जैसे मैंने बताया, छेड़खानी मत करिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपका,
0: कुदरती प्रोसेस को फॉलो कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए डॉक्टर भावेश मोदी जी ने आज इतनी सारी बातें बताई कि अगर हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या में इनको शामिल कर लेंगे तो हमारे ईएनटी की हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रहेगी और इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर भावेश मोदी,
1: थैंक यू,
0: प्लेजर सर। इतनी सारी बातें पता लगी, छोटी छोटी बातें हैं पर हम कभी इन पर ध्यान नहीं देते, पर आज से ध्यान देंगे।
1: थैंक यू गौरव, इट वॉज प्लेजर।
0: एंड सर आपसे मिलना होगा तो आई एम श्योर लोग किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर को ऑप्ट कर सकते हैं, एंड देन आपसे सुबह और शाम दोनों ही टाइम आपको टाइमिंग है आपके क्लिनिक।
1: यस यस यस।
0: चलिए, ये थे डॉक्टर भावेश मोदी, ओनली 189.6 मिर्ची 1।
1: इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The Mentalist Sohani Shah live.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में गाना कोई भी हो खुद ब खुद हिट हो ही जाता है। वेल मिर्ची घड़ी में फिलहाल टाइम शाम के 7:04 की तरफ क्लॉक हिट करती हुई मिर्ची स्टूडियोस की।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अरे जब कतर एयरवेज खुद डिस्काउंट दे रहा है तो अब नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस कतर वालों अगर आप सुन रहे हो तो याद रखो अब आप वेकेशन अगर प्लान कर करके ड्रॉप कर रहे थे कि टिकट प्राइसेस आए हैं तो कतर एयरवेज आपके लिए लेकर आया एक सुपर स्पेशल ऑफर इकोनॉमी बिजनेस और फर्स्ट क्लास टिकट पर हर उस रिटर्न फ्लाइट के लिए जो दोहा से स्टार्ट होती है। हालांकि इसमें दो फ्लाइट्स को शामिल नहीं किया गया है लेकिन वो बेरूत और अम्मान के लिए है। इसके अलावा बात करें तो आपको थोड़ी सी डिटेल और जानिए। सबसे पहले इस ऑफर को अगर ग्रैब करना है तो आपको टिकट्स September 17, 2026 यानी कि अगले 4 दिनों में बुक कर लेनी है और जो कि विंडो है वो बहुत बड़ा है ट्रेवल डेट का। December 9, 2026 तक आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हो, मतलब September 17 तक अपनी टिकट्स बुक करा ली एंड 9 दिसंबर से पहले आपको ट्रेवल करना है। ये लेकिन ध्यान रखिएगा मिडिल ईस्ट एयरलाइन की बेरूत और रॉयल जॉर्डेनियन की अम्मान फ्लाइट इस ऑफर में नहीं शामिल है। और उससे बड़ी बात ब्लैकआउट डेट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर दोहा से डिपार्चर है तो October 22 to 24 तक ब्लैकआउट डेट्स रहेंगी और रिटर्न फ्लाइट्स के लिए 29 to 31 अक्टूबर तक ये ब्लैकआउट डेट रहेगी। आई एम वेरी श्योर आपने स्मार्ट प्लानिंग करके अगर टिकट बुक की तो फायदा ही फायदा होगा। तो देर किस बात की, September 17 लास्ट डेट है, जल्दी से बैग पैक करना शुरू कर दो और उससे पहले टिकट पैक कर लो। हाँ जी अब प्लान कहां जाने का कर रहे हो, देख लो कतर एयरवेज की फ्लाइट जहां जहां जा रही है यार, दुनिया के 160+ डेस्टिनेशन उनमें से कोई भी बुक कर लो। अब देखो हमने आपको बताया है अगर ट्रेवल कंपेनियन चाहिए तो हमें आपके साथ, बस बुक कर लो यार, चल चलेंगे आपकी इंजॉय करा देंगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: अरे कमरिया ही नहीं हिलेगी सर, दिमाग हिल जाएगा।
1: जब दी मेंटलेस सुहानी शाह आपका माइंड रीड करना शुरू करेगी। 89.6 बिरजीवन पर मैं हूँ आरजे मस्तमौला गौरव। एंड यार करिश्मा तन्ना का मोबाइल फोन का कोड कोई कैसे क्रैक कर सकता है? मुझे लगता कोई अपने मोबाइल फोन का कोड किसी और को बताता है। ऐसे में करिश्मा तन्ना का सबके सामने कोड क्रैक हो गया भैया, लड़की एकदम डर गई है। और सिर्फ वही क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ कि सुहानी के सामने भेष बदल के जाऊं, अपना नाम गलत बताऊं, अपने दोस्तों के नाम गलत बता दूं तो कौन ही पकड़ने वाला है। मैंने अपनी ट्रिक तैयार कर लिया है। दी मेंटलेस सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम 25th of September एंड ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। ऑल सेट, तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। हमारे घर में तो एकदम शादी का माहौल लग रहा है। मिर्ची ऑफिस आई है, रोज प्लानिंग स्ट्रेटजी एकदम बन रही है। कुल मिलाकर बस आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है इस पूरी शाम का मजा लेने के लिए, जहां पर सिंगर डांस डुओ भी होंगे, यानी कि सिंगर चरण एंड आसी जो कि डांस परफॉर्मेंस से स्टेज पर आंख लगाने वाली है। ये सब कुछ के बीच मेंटली सुहानी शाह की वो परफॉर्मेंस जो हम सबको एकदम से शॉक देगी वो भी होगा। हाँ जी, लेकिन इसके लिए पहले टिकट बुक कीजिए। एस सिटी स्नूनू पर अभी भी आपको 30 कतारी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, जल्दी जाइए वहां बुक कर लीजिए। क्यू टिकट्स प्लेटिनम लिस्ट पर भी टिकट्स अवेलेबल हैं विद अर्ली बर्ड ऑफर प्राइजेस। तो फटाफट से अपनी टिकट बुक कर लीजिए। एक ऐसी शाम जो आपने इससे पहले कतर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो होने जा रही 25th September QNCC, मेंटलिस सुहानी शाह हमारे कतर में, एंड दिमाग को हिला डालेगी लड़की। मिर्ची थॉट।

0: पेरेंट्स बच्चों के टिफिन से लेकर उनकी पढ़ाई का ध्यान देते हो, लेकिन इस अपडेट पे ध्यान दो। कतर में आज एक बड़ा मेजर स्टेप लिया गया है, एंड दिस इज रिगार्डिंग द वैक्सीन विच वी नो एज HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: अगर आपके बच्चे ग्रेड 8th, 9th या 10th के हैं तो बस आपके लिए है सबसे जरूरी। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और PHCC ने मिलकर एक बहुत बड़ा हेल्थ अवेयरनेस स्टेप लिया है। अब नेशनल स्कूल वैक्सीन कैंपेन जो है ना, HPV जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं ना, उसकी वैक्सीन को भी ऐड कर दिया गया है स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। और इस कैंपेन का मेन मोटिव यही है कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर हेल्थ रिस्क है वो कम हो, हाई रिस्क वायरस स्ट्रेन से सिक्योर हो। और इसके लिए बकायदा 301 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लगभग 75,000 से भी ज्यादा मेल और फीमेल स्टूडेंट को इस ड्राइव में कवर किया जाएगा। तो भैया बड़ा सिंपल सा है, ये ड्राइव दो फेज में चलेगी। पहले फेज में सितंबर 20th से स्टार्ट होने जा रहा है और नवंबर 18th 2026 तक चलेगा। इसका सेकंड फेज नेक्स्ट ईयर अप्रैल 25th से मई 16th 2027 के बीच इंप्लीमेंट होगा। और खास बात ये है, इसमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है। वैसे तो आप पढ़ाई से लेकर उनके ब्रेकफास्ट से लेकर उनके लंच का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार आपको उनकी इस वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों को अपडेट रखना है, जब भी उनकी वैक्सीनेशन डेट आए उन्हें याद दिलाना है, एंड इस ड्राइव का हिस्सा बनकर अपने बच्चों के फ्यूचर को और सिक्योर बनाना और हेल्दी बनाना है। सो बस इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए और अपने बच्चों को इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में जरूर बताइए। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

अरिजीत सिंह आशीष कौर की आवाज में गाना सुनाया किसने वे माही। हाँ जी, मैंने तो सुना दिया, लेकिन इन सब के बीच मस्त मौला गौरव अब बात करेगा फेस्टिवल के सीन की। भाई आफ्टर ऑल धीरे धीरे अब हम उन फेस्टिवल्स की तरफ बढ़ेंगे जहां पर बहुत सारा बैक होम इन इंडिया माहौल बनता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी की बात की जाए, अब पंडालों में बड़े बड़े पंडाल सजेंगे, लोग वहां पर पूरी पूरी रात मौज करेंगे। इन सब के बीच लेडीज का एक और जबरदस्त ट्रेडिशनल फेस्टिवल जिसका नाम है तीज, वो भी है बैक होम इन इंडिया। ये बहुत बड़ा होता है, स्पेशली मैं आपको बताऊं, साड़ी वाले से लेकर हिना वाले तक, हिना वाले से लेकर मिठाई वाले तक, सबकी लॉटरी लगी होती है, सब अपने अपने तीज स्पेशल ऑफर निकाल रहे होते हैं इस उम्मीद में कि वहां का ये जो फेस्टिवल रंग है उसका थोड़ा रंग यहां भी चढ़ता है। और मैं लेडीज को अपनी तरफ से अभी अग्रिम वाली बधाई दे देता हूं, आपको तीज के लिए हैप्पी तीज बोलूंगा, और साथ ही साथ इतने कहूंगा कि अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे फेस्टिवल्स की रौनक बढ़ती जाएगी, एंड आई एम वेटिंग फॉर दोज डेज। क्योंकि यार मेरा ये मानना है, आप घर से कितना भी दूर आ जाएं, जब ये फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक फीलिंग में चले जाते हैं, एंड आपको याद आता है कि बचपन में आपने कितनी मौज काटी है यार। चलो जी, अगर गणेश पंडालों में जाकर आपने भी मौज काटी तो आपको भी याद आ ही होगा, इसी उम्मीद से कि सब कुछ अच्छा होगा और आने वाले टाइम में हम जबरदस्त मौज मस्ती करते रहेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, ये दिलाएंगे याद 25 सितंबर QNCC, तो सुहानी की टिकट्स बुक कर लो, क्यू टिकट्स, प्लैटिनम लिस्ट एंड SCTC नूनू पर, जहां अभी आपको 30 कतरे रियाल का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। तब तक लिए अभी भी मां सलामा, मिलेंगे कल एक बार फिर से मिर्ची इट्स हॉट, टाटा बाय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का। हाँ, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: क्या बताऊं यार, दोस्त रिटायरमेंट प्लानिंग में लगे हैं और मेरा तो अभी करियर शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत बुरा लगता है, क्या करूं?
1: तू एक काम कर, 22 साल की उम्र वाले दोस्त बना, फिर दिक्कत ही नहीं होगी, समझे?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
2: गाना इंडी टॉप 10
4: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी कि गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: नंबर 10।

0: कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौर के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafid wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello, Kiran Pal ji se baat kar sakta hu main?
3: Bolo.
4: Kiran Pal ji. से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं आपको?
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पगला।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Gana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. Number 7.

0: धड़कन है मेरी।
1: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगली वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
3: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
1: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बनी का नाम है कनिका। एंजॉय।

दूसरी लाइन आपको मुझे @RJKanega और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है। तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश @RJKanega पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग, राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक। इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे, गाने का नाम है दरमिया। पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: टी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जिस

पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साडी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram पर stay connected with me. This is the show जहाँ हफ्ते के top 10 hottest pop गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। You know, एक time था जब independent music को पसंद करना मतलब indie pop bands के fan थे। बहुत simple थी ये बात। एक band culture था जो इस alternative music का pillar था। From Euphoria to Silk Route to Indian Ocean, late 80s and early 90s में independent music ने हमें बहुत सारे bands दिए। And these bands have been inspiration to so many musicians. कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्पररी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया, एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स जीत कर, हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट। ऐसे ही गाने के बारे में बात करने वाली हूँ। इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका। एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है। गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है। वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना, हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट्स। कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है, एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट, बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला। उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया। उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन। हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे। पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूव कर रही हूँ दैट बूम शाकालाका, इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस। ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकालाका, अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhandanyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli bar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: Indie Top 10
1: Kani Kaka Saat
0: on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline.
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: बालकनी का दरवाजा खुला रखता हूँ तो कबूतर अंदर आ जाते हैं और पूरा रूम गंदा कर देते हैं, क्या करूँ?
3: अरे तो कबूतरों को बोलो कि चप्पल बाहर निकाल कर आए।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची.

जनरली ना गुलजार साहब आंखों से बहुत खिलते थे, लेकिन इस गाने में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स ऑफ आंखें, ये आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, गुलाबी आंखें। नोबडी एवर थॉट कि आंखें भी गुलाबी हो सकती हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम। ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ट्रेन, एंड ये काका की यानी राजेश खन्ना साहब की कंसेक्यूटिव 17th फिल्म थी, विच वाज अ सुपर डुपर हिट। उस समय ना काका का सिक्का एकदम बॉक्स ऑफिस पे चल रहा था, एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद राजेश खन्ना। सो इस फिल्म को राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था और नंदा जी ने इसमें काम किया है। सो नंदा जी उस टाइम पे ना राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, एक फिल्म आई थी इत्तेफाक पे, लेकिन उनके बहुत सारे सीन्स नहीं थे, बट शी अंडरस्टूड कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो उन्होंने ना जाकर के बात राजेंद्र कुमार को कही कि अब ये जो फिल्म बना रहे हो ना द ट्रेन, इसमें भाई इन्हीं को लो, यानी काका राजेश खन्ना को लो, वो बॉक्स ऑफिस पे इस समय धमाल कमाल मचा रहा है। सो दैट वॉज हाउ राजेश खन्ना केम इन द पिक्चर। एंड देन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ओहो हो द ट्रेन, इट वॉज अ सुपर डुपर मैसिव हिट। इसी फिल्म का गाना श्रेया ने आते ही सुनाया। अगले कौन से गाने, सब एक एक करके सुनाऊंगी, जल्दी किस बात की है। ये पूरे 3 घंटे पुरानी जीन्स के ऑन मिर्ची, आपके नाम मेरे नाम। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा.
3: Hello,
4: is that Mr. Vipul?
3: Yes,
4: Mr. Vipul. Hi, I am Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए.
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे.
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है.
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर. देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन.
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: मिलता है.
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी.
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं.
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
3: Talking about.
4: और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे. हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा. मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते. इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा.
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना.
3: हाँ. Who are you?
4: सर मनीष.
3: Who are you?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com. How dare you call me?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं. मूंगफली बेच दीजिए सर. सर आपको सी डाल रहा हूँ. मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना. दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है. आप रेडियो मिर्ची में, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मिर्ची पर आप श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बॉबी फिल्म का ये गाना जिसको शैलेंद्र सिंह ने गाया, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। एंड जब बॉबी फिल्म की बात आती है ना, तो ऑफकोर्स मैं तो थी नहीं जब ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि क्या क्रेजीनेस हुई थी टू वॉच दिस फिल्म। आई मीन देयर वर फैमिलीज जो वापस बार बार बार बार जा रही थी मूवी देखने, हॉल्स भरे हुए थे महीनों तक। एंड इतना ज्यादा ट्रेंड चला था बॉबी जूड़ा पिंस का, जो मुझे लगता है मुझे आज भी कई बार दिखती हैं वो जो जूड़ा पिंस है। सो शी सेड कि बॉबी नाम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे कि एवरीबडी वाज वेयरिंग कोई ना कोई बॉबी का प्रोडक्ट। जैसे कि बॉबी में यू नो डिम्पल कपाटिया ने बहुत जगहों पे पोलका डॉट्स पहने, वो आज तक फेमस है एज बॉबी पोलका डॉट्स। जैसे कि बॉबी जूड़ा पिन तो मैंने आपको बताई, जैसे कि बॉबी बाइक जिसपे उड़ा के लेकर के जाते हैं ना ऋषि कपूर डिम्पल कपाटिया को, वो बाइक भी एक्सट्रीमली फेमस हुई थी और रातों रात उसकी बिक्री बढ़ गई थी। ये होता था उस जमाने की फिल्मों का क्रेज जो इस जमाने में नहीं मिलता, करेक्ट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ उस जमाने के गाने, इस जमाने की श्रेया। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किशोरदा ना बाकी सबके लिए रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि ये गाना उनके दोस्त पे पिक्चराइज होना है तो फिर सारे रूल्स ड्रॉप। वेल, ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म नमक हराम, विच इज पिक्चराइज ऑन काका यानी राजेश खन्ना। और काका और किशोरदा और पंचमदा, इन तीनों की तिकड़ी भाई इंडस्ट्री में धमाल कर रही थी, कमाल कर रही थी। काका का ये रूल था कि उनके सारे गाने किशोरदा गाएंगे, और किशोरदा भी हैप्पीली अपने दोस्त के लिए सारे गाने गाते थे। मतलब बाकियों के लिए तो उनके पास फिर भी रूल्स थे कि क्या गाने का पैसा ऑलरेडी एडवांस में पे हो चुका है, जब हो जाता था तभी वो रिकॉर्डिंग सेशन में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर घुसते थे। लेकिन जब बात होती थी काका की तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता था। वन मेजर रीजन वॉज ऑल्सो बिकॉज बोथ ऑफ देम सॉ द सक्सेस इन देयर करियर्स टुगेदर। वो गाना है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आर डी बर्मन साहब ने गाना कंपोज किया और इसको गाया अफकोर्स किशोरदा ने। और इस पे ये किस पे पिक्चराइज था, काका पे। सो होता ये है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इससे पहले किशोरदा ने जितने गाने गाए थे ना वो इतने पॉपुलर नहीं हो रहे थे। आर डी बर्मन साहब ने उनसे कहा था, किशोर बस ये आखिरी गाना है, अगर तुमको इस गाने के साथ सक्सेस नहीं मिली तो तुम्हें जो करना है करना, अगर तुम्हें अपने गांव वापस जाना है तो वहां भी ले जाना। लेकिन इस एक गाने ने किशोरदा की तकदीर बदली एंड ऑफकोर्स काका बिकेम अ सुपरस्टार। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शंकर महादेवन,
4: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
5: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, to put this sunscreen, it's not sunscreen, the one which you use for the sporting thing, it's very important to put that sunscreen thing is what my wife told me.
3: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रेखा जी और विनोद मेहरा की ये फिल्म का गाना है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, पुरानी जीन्स पे, आप और श्रेया के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एंड ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म घर, जिसमें रेखा जी थी, विनोद मेहरा थे। लेकिन रेखा जी से पहले इस फिल्म की एक्ट्रेस होने वाली थी मौसमी चैटर्जी। मौसमी चैटर्जी और विनोद मेहरा का उस टाइम पे ना बड़ा रूमर्स थे कि दे आर सीइंग ईच अदर। और भाई उस टाइम तो फिल्म मैगजीन्स ऐसे छटपट बिकती थी कि पूछो नहीं। सो हर फिल्म मैगजीन में उनके बारे में लिखा जा रहा था। मौसमी चैटर्जी को लगा कि भाई ये तो बेसलेस है, एंड अगर मैंने इस समय विनोद मेहरा के साथ काम किया तो फिर इन रूमर्स को और हवा मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड डूइंग द रोल। और फिर ये गया रेखा जी के पास, जो उस समय इनिशियली अपना करियर बिल्ड कर रही थी, और जैसे ही उनको ये गुलजार साहब की फिल्म मिली, उन्होंने झट से पकड़ ली। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, किशोरदा का ये गाना था। अब आ रहा है किसका गाना, ये बहुत अलग गाना है, खुद सुन लो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे, कैसे करूँ? प्लीज हेल्प करो ना।
2: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर रस्ताना के पास जाना।
3: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।
4: कह दूं तुम्हें
5: हाँ
4: या चुप रहूं?
5: ना
4: दिल में मेरे आज क्या है?
5: क्या है?
4: कह

मनमोहन देसाई की डायरेक्टेड ये सुपर हिट फिल्म जिसका गाना अभी आपको सुनाया, दिस इज फ्रॉम द फिल्म अमर अकबर एंथनी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग गुफा पे इस फिल्म में, बताती हूँ आपको व्हाट हैपेंड। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, सो नीतू सिंह और ऋषि कपूर का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें नीतू सिंह प्लेज अ डॉक्टर रोल। इस डॉक्टर का कैरेक्टर नेम है डॉक्टर सलमा। लेकिन जब ऋषि कपूर नीतू सिंह से पहले सीन में मिलते हैं तो वो उन्हें डॉक्टर सलमा नहीं कहते, वो उन्हें नीतू कहते हैं। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मूवी की एडिटिंग हो गई, मूवी रिलीज हो गई, देयर वाज नो एफर्ट टेकन टू एक्चुअली यू नो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। मतलब लोगों ने बस जाने दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस गूफअप को जो हम सब नोटिस कर सकते हैं वो किसी ने नोटिस नहीं किया हो। ऑफकोर्स डायरेक्टर, कैमरामैन या एडिटर किसी ने तो किया होगा, बट उस टाइम के लोग ना इमोशंस पे ज्यादा जाते थे, मुझे ऐसा लगता है, रादर देन यू नो गोइंग बाय द बुक्स कि इस चीज को ऐसे ही शूट करना है, उस चीज को ऐसे ही शूट करना है। अरे फ्लो में निकल गया यार, इमोशन तो इंटैक्ट है। पुरानी जीन्स में, दिस इज मी श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सका बाना।
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी।
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे।
4: सही बात कह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
3: आप किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
3: हेलो,
4: हाँ बोलिए।
3: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
4: मैं क्या सुधरू यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
3: साहब, मेरे से तो
4: नहीं,
3: बातें सही से कर रहे हैं। नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं
3: रहे हैं।
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात
4: नहीं
3: कर रहे हैं।
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
3: तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
4: बात नहीं, तमीज ठीक है? नहीं, तमीज
3: नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं सुननी है।
4: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सूरज भड़जातिया ने नूतन जी को प्रॉमिस किया था कि उनके बेटे का कैरेक्टर बहुत ही सॉलिड निकलेगा, इवन दो ही इज प्लेइंग द व्हाट डू आई से, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग एन एजुकेटेड विलेन. पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ, एंड ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार किया. इसमें अपना डेब्यू करने वाले थे मुनीश बहल. डेब्यू क्या, उससे पहले भी उन्होंने फिल्में की थी जिसमें ही वेंट अननोटिस्ड. अब ये सूरज भड़जातिया की जो फिल्म थी जिसमें सलमान खान अपना डेब्यू कर रहे थे, भाग्यश्री अपना डेब्यू कर रही थी, उसके बीच में नूतन जी का बेटा जो है वो विलेन का कैरेक्टर प्ले करेगा, ये बात नूतन जी को समझ नहीं आ रही थी. तो उन्होंने ना सूरज भड़जातिया जो कि उनके बहुत क्लोज दोस्त थे, उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की कि क्यों नहीं मेरे बेटे का रोल चेंज कर दे रहे हो, उसे कोई और रोल दे दो, उसे वो दोस्त वाला रोल दे दो, सलमान के फ्रेंड वाला. लेकिन सूरज भड़जातिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे का रोल विल बी एच्ड इन हिस्ट्री, लोगों को याद रहेगा, मैं इतना सॉलिड बनाऊंगा. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. मनीष बहल का रोल इन दिस फिल्म वाज आइकॉनिक, मतलब लोगों को आज भी याद है. लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म का पहले नाम होने वाला था राग रागिनी, लेकिन फिर ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं यार, कहीं लोगों को इससे गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले कि द फिल्म इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड लोग देखने ही ना है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जगाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अभिमान, यानी बच्चन साहब की फिल्म एंड ऑफकोर्स जया जी की फिल्म। तो ऋषिकेश दा जब ये फिल्म बना रहे थे ना, इनफैक्ट जब वो क्लैप्स होती है ना, मुहूर्त होता है, उसमें भी लिखा गया था राग रागिनी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे फिल्म स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, अगर हमने इसका नाम राग रागिनी रखा तो लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ म्यूजिक पे फिल्म होगी, और इसकी वजह से फिल्म का असली एसेंस, अभिमान या फिर ईगो प्रॉब्लम ले लो, वो कहीं छूट ना जाए। द प्राउड दैट ही वॉन्टेड टू शो बिटवीन यू नो अमंग्स रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई ही चेंज द नेम, उन्होंने राग रागिनी से हटा के इसे रखा अभिमान। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, इन केस मुझसे कुछ बात करनी है, कोई शिकायत भी करनी है, तो एकदम धड़ल्ले से कर सकते हो। फेसबुक एंड इंस्टा माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

मूवी के प्रीमियर पे ना इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आते थे, और जब फिल्म ख़त्म हो जाती थी तो ना अगर उन्हें अच्छी लगती थी तो वो जाकर के अप्रिशिएट करते थे, नहीं अच्छी लगती थी तो भी बिना कुछ कहे निकल जाते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। इस फिल्म के प्रीमियर पे राजेश खन्ना साहब को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ही वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। स्टिल आराधना की बात कर रही हूँ जिसका गाना भी मैंने आपको सुनाया। तो कहते हैं कि काका ना वो जो स्टेज होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर कोने में खड़े हुए थे। भाई इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें देखा बट इग्नोर कर दिया, बिकॉज इस फिल्म से पहले काका की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। बट आफ्टर दे वॉच द फिल्म एट द प्रीमियर, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कहाँ है खन्ना, कहाँ है खन्ना। दैट हैपेंड क्योंकि लोगों को पता चल गया था, ओहो राजेश खन्ना हैज अराइव्ड आफ्टर आराधना। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने और बातें तो चलेंगी, लेकिन मैं कौन हूँ ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज रात में मिलती हूँ, मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6
1: It's hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दीवाना

रोल चाहे जितना भी खास हो, जितना भी मीठी हो, लेकिन उस जमाने के एक्टर्स दोस्त हुआ करते थे और इस कदर की दोस्ती निभाते थे कि जाकर के पूछते थे, अरे ये रोल तू नहीं कर रहा क्या, क्यों, क्या रीजन है? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे नासिर हुसैन साहब और फिल्म में मेन लीड करने वाले थे देव साहब। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ जिसकी वजह से देव साहब लेफ्ट द फिल्म। अब नासिर हुसैन साहब शम्मी कपूर के पास गए इस फिल्म का मेन लीड का रोल लेकर के। ही प्रपोज द रोल टू हिम। शम्मी साहब जो उस समय डायर नीड ऑफ अ गुड रोल थे, यू नो, एक अच्छी फिल्म टू बी डायरेक्टेड बाय अ गुड डायरेक्टर, कि उनके करियर का ग्राफ उड़े, वो चाहते थे ये रोल, दिल ही दिल में बहुत ज्यादा चाहते थे। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? देव साहब क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने देव साहब को कॉल किया और ये कंडीशन उन्होंने नासिर हुसैन के सामने भी रखी कि अगर देव देव विल बी ओके विद इट तभी मैं ये रोल करूंगा। सो भाई उन्होंने कॉल किया, देव साहब ने कहा हाँ हाँ कर ले, तेरा ही रोल था वो। तब शम्मी साहब ने इस फिल्म में स्टार किया एंड द मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट, वन ऑफ शम्मी कपूर्स मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स। रफ़ी साहब ने गाना गाया पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। ऐसे बहुत सारे किस्से एक एक करके शेयर करूंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: हाँ जी कौन
2: हेलो
3: किससे बात करनी है
2: भैया किससे बात करनी है भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला
2: पागल
3: पता नहीं कौन बोल रहा था
4: इको आ रहा है इको
2: हेलो
3: जैन साहब भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
2: भैया
3: नंबर चेक के मिला
2: हेलो भैया क्यों
3: परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार नंबर आ गया मेरे पास
2: पागल
3: कहीं का
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
2: रवि
4: मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें इको नहीं आएगी बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई
4: खत्म कर दो यार
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची 89.6 मिर्ची आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म बॉबी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शैलेंद्र जी ने गाना गाया। एंड ऋषि कपूर जब ये फिल्म बनने वाली थी उससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर जाया करते थे, काइंड ऑफ ए जिम। ओके, उसमें उनकी जो ट्रेनर थी शी वॉज अ पारसी गर्ल जिसका नाम था यास्मिन, एंड ही फेल इन लव विथ हर। आई मीन वो उनका पहला प्यार थी। अब जब ऋषि कपूर की फिल्म रिलीज हुई एंड ही बिकेम अ ह्यूज स्टार, तो कुछ कारणवश दे बोथ पार्टेड वेज। कहते हैं कि ऋषि कपूर थोड़े एरोगेंट भी हो गए, थोड़ा कम टाइम भी दिया, जिसकी वजह से दे बोथ ब्रोक अप। अब असली बात क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली पता है दैट यास्मिन वॉज गॉर्जियस, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज ब्यूटिफुल, और ये ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रजिया सुल्तान का ये गाना विच इज संग में लता जी ओनली ऑन पुरानी जीन्स, मैं हूँ श्रेया। अच्छा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि फिल्म में उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज था। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि कमाल अमरोही जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी उन्होंने फिल्म को बनाने में बहुत साल लगा दिए। ही टुक 5 years टू मेक द फिल्म। जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो भाई इंडस्ट्री ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि इंडस्ट्री को एज एट यू नो एज द एंटायर इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री को डेट में लाने वाले कमाल अमरोही साहब की ये फिल्म थी। बट कमाल अमरोही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि 5 साल तक फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था, फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू थे, फिल्म का कैमरामैन, लाइटमैन, एवरीबॉडी, सबको काम मिला अपना घर चलाने के लिए। और मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। आई मीन हेमा मालिनी ना आपको एकदम अलग ही अवतार में दिखेंगी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
5: दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: पुरानी जीन्स पे अभिषेक के साथ चले, जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, जो बस अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल। और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिलवाले।
0: Absolutely, जीवन के दिन छोटे ही से हम भी बड़े दिल वाले। लता जी के आवाज में गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी फेसबुक और इंस्टा पे, माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बाय। जीवन

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,